कितना सुंदर संदेश है सुबह की पहली किरण में, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का उजाला अपना रास्ता बना ही लेता है। उसी तरह जीवन में निराशा, असफलता या कठिन समय हमेशा नहीं रहता,

दैया दाए उठाए लियो गिर नक पर बंसी बजावत धेनु चनैया जग के मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा।

0: सबको नमस्ते।
1: और चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी कि अंधेरों से घबराकर सफर छोड़ा नहीं करते, उम्मीदों के दिए जलाकर रास्ते खोजा करते हैं। हर सुबह यही पैगाम लेकर आती है, जो बीत गया उसे भूलो, नई शुरुआत तुम्हें बुलाती है। जल्द मुलाकात होगी, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रूपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रूपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिजेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री

0: क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है, वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Ashish P. Abraham. PM Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. PM will also address the gathering on the occasion. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by PM Modi in New Delhi. The National Social Assistance Program has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the Disability Pension Scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above.
2: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible for the pension from birth. The number of beneficiaries is expected to increase significantly, with approximately 27 lakh persons with disabilities expected to benefit under this pension scheme. The total number of beneficiaries will rise to around 3 crore 20 lakh.
1: Pension schemes for senior citizens and widows as well as the family benefit scheme will continue in their existing form. The union minister said the government has also given nod to the strategic restructuring of IDBI Bank. PM Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi today. The PM will also address the gathering on the occasion. India finished fourth in the medal tally at the Asian Games held in Aichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. The Delhi government has announced a payment of 1,370 rupees to students of Municipal Corporation of Delhi schools through direct benefit transfer. In this regard, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that over 70 crore rupees was released.

0: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

Well, welcome back, listeners. Aaj 15th October hai, and this day is also celebrated as World Students Day in honor of Dr. EPJ Abdul Kalam, recognizing his deep connection with students and education. Kalam sir hamesha kehte the ki aaj ke students hi kal ke leaders hai. He encouraged young people to develop knowledge, confidence and creativity, strong values. Unki life hame एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है कि योर बैकग्राउंड डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर. योर हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड एटीट्यूड कैन मेक अ डिफरेंस. चाहे आप स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो, जॉब सीकर हो या अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, रिमेम्बर फेल्यूर इज नॉट द एंड. इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड राइज अगेन. डॉक्टर कलाम सर मे नो लॉन्गर बी विद अस, बट हिज थॉट्स कंटिन्यू टू inspire millions of people. तो आज उनके birthday पर let's make a promise to ourselves कि dream big, work hard, stay humble and contribute something meaningful to our nation. संतरी आकाशवाणी 101.9 FM Rainbow.

वेलकम बैक लिसनर्स। तो हाँ, स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कभी मार्क्स कम आते हैं, कभी बेस्ट फ्रेंड से फाइट हो जाती है, कभी फ्यूचर को लेकर कंफ्यूजन होता है। लेकिन याद रखिएगा, एक एग्जाम में कम मार्क्स आने से आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं होती। एक रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं है। लाइफ एक लॉन्ग जर्नी है और स्टूडेंट लाइफ उस जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिएगा। हर किसी का जर्नी अलग है, हर किसी का टाइमिंग अलग है। आपकी सक्सेस का मतलब किसी और से आगे निकलना नहीं, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनना है। एंड नाउ लेट्स डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर चेजिंग देयर ड्रीम्स वन स्टेप एट ए टाइम। सिंधरी आकाशवाणी 101.9 एफएम रेनबो, पत्नी आजे अभिज्ञा। रेनबो के लाइफ साथ है, लाइफ है रंगीन।

101.9. वेलकम बैक लिसनर्स। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी जगह पर जहां आसाम को छूटे हुए पहाड़ हैं, मॉन्स्ट्रीज की पीसफुल एटमॉस्फियर है, कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हैं और हर ट्रेडिशन के पीछे छुपी है एक ब्यूटीफुल स्टोरी। यस, टुडे वी आर ट्रैवलिंग टू द ब्यूटीफुल हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम। लेकिन आज की जर्नी सिर्फ माउंटेन्स, स्नोफॉल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में नहीं है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे सिक्किम की आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड हेरिटेज के बारे में, यानी वहाँ की कला, हस्तशिल्प, परंपराएं और कल्चरल आइडेंटिटी। Did you know that Sikkim is home to different communities including the Lepcha, Bhutia and Nepali community, each contributing to its rich cultural landscape. Unke traditional clothes, folk dances, handicrafts, vegetable festivals aur food habits Sikkim ko ek unique cultural identity dete hain. Imagine kijiye, ek taraf Buddhist monasteries mein spiritual chants ki awaaz, dusri taraf ट्रेडिशनल हैंडलूम्स पर बुने करते हुए आर्टिशियंस और फेस्टिवल्स के टाइम कलरफुल मास और ट्रेडिशनल डांसेस। कितना ब्यूटीफुल कल्चरल एक्सपीरियंस होगा, राइट? सो डियर लिसनर्स, अपनी इमेजिनेशन की सीट बेल्ट बांध लीजिए बिकॉज अब ये जर्नी शुरुआत होने वाली है। सुनते रहिए 101.9 FM रेनबो।

0: वेल वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम बात कर रहे थे सिक्किम की। दोस्तों, जब हम सिक्किम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ब्यूटीफुल माउंटेन्स, गैंगटॉक लेक और स्नो कवर्ड लैंडस्केप्स याद आती हैं। बट सिक्किम्स रियल ब्यूटी गोज मच डीपर देन इट्स सीनरी। इट्स हेरिटेज इज शेप्ड बाय सेंचुरी ऑफ ट्रेडिशंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी लाइफ एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। सिक्किम बिकेम द इंडियाज 22nd स्टेट इन 1975 बिफोर ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन एंड इट हैड अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री एज ए हिमालयन किंगडम। दोस्तों, किसी भी जगह की हेरिटेज सिर्फ पुरानी बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं होती। हेरिटेज का मतलब है कि वो ट्रेडिशंस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाती है, जैसे फैमिली के फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल स्टोरीज और स्पेशल ओकेशंस पर पहने जाने वाले कपड़े। सिक्किम में भी यही कल्चरल कंटिन्यूटी देखने मिलती है। जब कोई आर्टिशियन ट्रेडिशनल कारपेट बनाना है, जब कोई डांसर जनरेशन से चल रहा डांस स्टेप्स परफॉर्म करता है, या जब कोई फैमिली अपनी ट्रेडिशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, तब हेरिटेज जिंदा रहती है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कल्चर। इट कनेक्ट्स आर पास्ट विथ आर प्रेजेंट। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपनी रूट्स और ट्रेडिशंस को समझना हमें अपनी आइडेंटिटी से जोड़ कर रखता है। सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो।
1: King Khan, yo, honey singer.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेल वेलकम बैक लिसनर्स. अब हम बात करेंगे कि सिक्किम की एक फैसिनेटिंग आर्टिस्टिक ट्रेडिशन की तंगका पेंटिंग. तंगका पेंटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टिबेटियन बुद्धिस्ट आर्टिस्टिक ट्रेडिशन प्रैक्टिस्ड इन सिक्किम एंड अदर हिमालयन रीजन्स. दोस्तों सोचिए, एक पेंटिंग बनाने के लिए आर्टिस्ट को कितनी कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस चाहिए होगी. हर लाइन, हर कलर और हर छोटी डिटेल पर कितना ध्यान देना पड़ता होगा. तंगका पेंटिंग हमें ये सिखाती है कि आर्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती, कभी कभी आर्ट एक लैंग्वेज बन जाती है जिसके थ्रू बिलीव्स, वैल्यूज और स्पिरिचुअल आइडियाज एक्सप्रेस किए जाते हैं. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेडिशनल आर्ट सीखने में सालों की प्रैक्टिस लग सकती है, इसलिए आर्टिशियंस और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत वैल्यूबल है. आज जब डिजिटल आर्ट और AI जनरेटेड इमेजेस का जमाना है, तब भी ट्रेडिशनल हैंड पेंटिंग आर्ट की अपनी एक स्पेशल वैल्यू है बिकॉज एवरी हैंडमेड आर्ट वर्क कैरीज द आर्टिस्ट टाइम, स्किल एंड पर्सनल डेडिकेशन. सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 रेनबो के साथ है लाइव रंगी.
2: నా బైక్ లో ఇప్పుడు నాకింగ్ తక్కువగా ఉంది.
3: నా కార్ ఆల్రెడీ తక్కువ పొల్యూషన్ రిలీజ్ చేస్తుంది.
4: మరి నా స్కూటర్ పికప్ కూడా చాలా బాగుంది.
2: మీరు ఏ వెహికల్ డ్రైవ్ చేసినా E20 పెట్రోల్ యూస్ చేస్తే నాకింగ్ తగ్గుతుంది, కార్బన్ ఎమిషన్స్ 40% వరకు తగ్గుతాయి.

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी उपस्थित थे। डॉ जयशंकर ने बहुपक्षवाद के तत्काल सुधार के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बदली वैश्विक व्यवस्था की गति को समझना जरूरी है। डॉ जयशंकर ने श्री नहयान के साथ बैठक में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री माका बोत

0: चोरी शिवली से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हीली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित आईयूकेएफपी बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने साझा प्राथमिकताओं, रचनात्मक और समावेशी G20 प्रक्रिया की दिशा में ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस साल पूरी होने की उम्मीद है। कल मुंबई में श्री सिद्धू ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में हुई प्रगति द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा के दौरान CEPA के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
1: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड है सीन इन द वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में यह माना जाता है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसी तर्क पर मैं कहता हूँ होप फॉर द पीस बट प्रिपेयर फॉर वॉर।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

101.9. वेलकम बैक लिसनर्स, अब आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के सेगमेंट में आखिरी पड़ाव पर। दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्किम की स्पिरिचुअल और आर्किटेक्चुरल हेरिटेज की।

सिक्किम के मॉनेस्ट्रीज अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, पीसफुल एटमॉस्फेयर और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए जाने जाते हैं। सम वेल नोन एग्जाम्पल्स इंक्लूड रूमटेक मॉनेस्ट्री, ताशीडिंग मॉनेस्ट्री जैसे। दीज प्लेसेस आर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस लाइफ, लर्निंग एंड कल्चरल ट्रेडिशनल्स। दोस्तों, कभी कभी हम किसी ब्यूटीफुल प्लेस पर जाकर सिर्फ फोटोग्राफ्स क्लिक करने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर उस जगह की हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस को समझें तो एक्सपीरियंस और भी मीनिंगफुल बन सकता है। मॉनेस्ट्री की वॉल्स पर बनी पेंटिंग्स, प्रेयर व्हील्स, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और पीसफुल सराउंडिंग्स, हर एलिमेंट के पीछे एक कल्चरल या रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। ये प्लेसेस हमें पेशेंस, रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअलिटी के इम्पोर्टेंस की याद दिलाती है। सिक्किम की हेरिटेज को अप्रिशिएट करने का बेस्ट तरीका है उसकी ब्यूटी के साथ उसकी ट्रेडिशंस को भी समझना। तो सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM, रेनबो रेनबो के साथ है, लाइफ है रंगीन।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listener. The time is passing in the studio clock by 12:24. Right. Listeners, आज हम 15 अक्टूबर को हम याद कर रहे हैं विटेरन हिंदी सिनेमा के थिएटर एक्टर डायरेक्टर ओम शिवपुरी जी को. ओम शिवपुरी इंडियन थिएटर और हिंदी सिनेमा का एक रेस्पेक्टेड नाम थे. उन्होंने अपनी एक्टिंग जर्नी में कई मेमोरेबल कैरेक्टर रोल्स निभाए और थिएटर को भी अपना इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े रहे और दिल्ली में दिसंतर थिएटर ग्रुप की फाउंडेशन में भी उनका इम्पोर्टेंट रोल था. हिंदी फिल्म्स में उन्होंने सीरियस कैरेक्टर से लेकर नेगेटिव रोल्स तक अपनी वर्सटैलिटी दिखाई. उनकी परफॉर्मेंसेस ने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी कहानी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया. दोस्तों, सिनेमा में हर कैरेक्टर को लीड रोल मिलना जरूरी नहीं होता. कभी कभी सपोर्टिंग रोल्स ही फिल्म की स्टोरी को डेप्थ और स्ट्रेंथ देती है. ओम शिवपुरी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें याद दिलाता है कि थिएटर और सिनेमा दोनों में डेडिकेशन, डिसिप्लिन और टैलेंट की अपनी एक स्पेशल जगह होती है. आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर लेट्स रिमेम्बर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर एंड हिंदी सिनेमा विद रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड. सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीत.

0: 101.9।
1: वेलकम बैक लिसनर्स। अब बात करते हैं एक और मेमोरेबल एक्टर की, पंकज धीर जी, जिन्होंने टेलीविजन सीरियल महाभारत में कर्ण का आइकॉनिक रोल के लिए याद किया जाता है। कर्ण का कैरेक्टर फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट और डेस्टिनी के बीच एक इमोशनल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। पंकज धीर जी ने अपनी डिग्निफाइड पर्सनालिटी और पावरफुल परफॉर्मेंस से इस कैरेक्टर को जनरेशंस के लिए मेमोरेबल बना दिया। दोस्तों, कुछ कैरेक्टर्स सिर्फ टेलीविजन पर नहीं रहते, बल्कि ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना लेती हैं। पंकज धीर जी का कर्ण का भी ऐसा ही कैरेक्टर था। आज उन्हें याद करते हुए लेट्स पे ट्रिब्यूट टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन टेलीविजन।

वेल दैट वॉज अ अमेजिंग सॉन्ग राइट. जैसे कि हम दोस्तों 90s एरा के गाने बहुत अमेजिंग थे होते थे. एंड यस उस टाइम में काफ़ी ब्यूटिफुल फिल्म्स भी रिलीज हुई थी अक्टूबर में. जैसे कि दिल इट वॉज एन मैसिव फिनोमिनन इन अक्टूबर. एंड जैसे कि आमिर खान और माधुरी दीक्षित जी की एक्टिंग वॉज अमेजिंग. एंड लाइक आशिकी आशिकी वॉज स्टिल ड्राइविंग द नेशन क्रेजी इन अक्टूबर. और बात करें घायल फिल्म की विच वॉज नेशनल अवार्ड विनिंग. दिस फिल्म्स ऑलवेज रिमेन्स इन द हार्ट ऑफ ऑडियंसेस राइट. तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे अभिज्ञा.

पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार दोस्तों, एक टाइम था जब स्मार्टफोन्स, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब लेसन्स ये कुछ भी अवेलेबल नहीं थे. रेडियो वॉज हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट साइंस, डिस्कवर न्यू आइडियाज एंड एक्सपैंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. और यही है एक ट्रू इनोवेटर की पहचान. दे डोंट सिंपली आस्क व्हाट कैन आई डू विद द टेक्नोलॉजी, दे आस्क हाउ कैन आई यूज दिस टेक्नोलॉजी टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर. Dr. Sridhar also contributed to educational broadcasting initiatives such as Gyan Darshan, Gyan Vani, helping make education accessible through electronic media. Dosto, innovation ka matlab hamesha koi nayi machine invent karna nahi hota. Sometimes, it means using an existing idea in a way that changes thousands of lives.

एंड ये जर्नी वो प्रूव करता है कि नॉलेज बिकम्स ट्रूली वैल्यूएबल व्हेन वी शेयर इट विद अदर्स. एंड नाउ लिसनर्स, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट. ये बहुत गर्व की बात है कि हमारी इंडियन रेडियो फैटर्निटी इन 2026 डॉक्टर आर श्रीधर रामामूर्ति वॉज नेम्ड एज अ रिसिपियंट ऑफ द प्रेस्टिजियस पद्मश्री, India's fourth highest civilian honor for his contribution to radio broadcasting. The honor recognizes his more five decades of work in broadcasting, educational media and community radio. Yes, keep listening. Akashvani 101.9 FM Rainbow.

वेलकम बैक दोस्तों, उनके अचीवमेंट सिर्फ एक अवार्ड तक लिमिटेड नहीं थी. हिज जर्नी हैज इंक्लूडेड वर्किंग विद आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग, सपोर्टिंग कम्युनिटी रेडियो इनिशिएटिव्स एंड कंटिन्यू टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर ऑडियो एंड पॉडकास्टिंग. बहुत सारे डिकेड्स के बाद भी उन्होंने एडवोकेट एवोल्यूशन ऑफ द रेडियो एंड नए तरीके भी ढूंढे हैं ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए. एज एन आरजे आई फाइंड हिज जर्नी वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज इट रिमाइंड्स ऑल ऑफ

us in broadcasting that our voices can do much more than entertain. They can educate, inspire, preserve, culture and bring communities together. तो दोस्तों आज हमने ढेर सारी बातें की है, बहुत सारे इंस्पिरेशनल एंड थॉटफुल लेसन भी सीखे हैं, कई सारे अमेजिंग गाने भी सुने. तो आज के लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, पर आप लोग कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए क्योंकि अगले आरजे आपसे जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है. तो सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर।
1: सजग भारत, जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: FM Rainbow
1: 101.9 PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: विशेष अतिथि हैं कर्नल कमर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन, और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे इस खास शो में। कर्नल कमर भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय निकाला और आज आप हमारे शो में शामिल हुए हैं। हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में, और आप हमें मैसेज करके कर्नल कमर भारद्वाज से सवाल कर सकते हैं, कुछ बात करना चाहे तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और हमारे साथ आज के बहुत ही विशेष अतिथि जिन्होंने देश को देश की सेवा में दो पीढ़ियों से ज्यादा की सर्विस दी है डिफेंस सर्विसेज में। कमीशन किए गए कर्नल कमर भारद्वाज इंडियन आर्मी में 11 जून 1967 को राजपुताना राइफल्स इन्फेंट्री में 1971 वॉर वेटरन हैं कर्नल कमर भारद्वाज। 1971 वॉर में उन्होंने कंपनी कमांडर के तौर पर लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और किस तरह से शुरुआत हुई वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बातचीत शुरू करते हैं हमारे आज के खास मेहमान कर्नल कमर भारद्वाज से। सर, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई शुरुआत आपका, या परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं था आर्मी से, आप किस तरह से जुड़े, कैसे वो जज्बा आपके दिल में आया?
1: मैं अपने बारे में बताने के साथ ये मैं कहूँगा कि मैं एक बहुत ही जमींदार फैमिली का तीसरे नंबर का बेटा था
0: जी,
1: और मेरे पिताजी जो थे वो एक फार्मर थे, और उसमें जो मैंने मैट्रिकुलेशन किया वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके और आर्मी ज्वाइन की एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: और टेक्निकल रेजिमेंट सिग्नल्स के अंदर मेरा एंट्री हुआ व्हेन मेरी उम्र केवल 17 साल 216 दिन की थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय हम सिग्नल्स के अंदर रिक्रूट भर्ती किए गए थे
0: जी,
1: और वहाँ भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग वगैरह खत्म किया और उसके बाद में हम जालंधर पोस्टिंग हो गए एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: ये फौज के बारे में मोटिवेशन इतना कुछ नहीं था, एक जमींदार फैमिली से होने के नाते कॉलेज से भागकर,
0: अच्छा,
1: फर्स्ट ईयर कॉलेज से भागकर हम आर्मी के अंदर ज्वाइन किया
0: जी,
1: और अपना मोटिवेशन यही था कि हम आर्मी के अंदर किस प्रकार से नौकरी करें
0: जी। सर, आप एक जमींदार, एक किसान परिवार से आते हैं, आपके पिताजी किसान थे, तो आपका किस तरीके से वो परिवेश रहा और अचानक फिर ऐसे आपके दिल में जो जज्बा आया फौज ज्वाइन करने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए, तो ये कहां से मोटिवेशन, जैसे आपने बताया कि हमें
1: ये बहुत ही एक अजीब सी बात है कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी करूं।
0: अच्छा।
1: बट जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ी रहा था गवर्नमेंट स्कूल गढ़ी अर्सरू में
0: जी,
1: उस समय मेरा एंगेजमेंट हो गया।
0: अच्छा।
1: और एंगेजमेंट से डर के शादी नहीं करें। अच्छा। अभी कॉलेज से भाग करके और बगैर बताए पेरेंट्स को हमने आर्मी ज्वाइन कर ली।
0: अरे वाह।
1: और आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब पता पड़ा हमारे पिताजी को कि हम
0: फौज
1: में जा रहे हैं तो पूरा परिवार बहुत नाराज था
0: जी।
1: और पिताजी ने आकर के काफी कुछ कोशिश की, क्योंकि जो मेरी वाइफ जो शिक्षा भारद्वाज जो अभी नहीं है
0: जी,
1: तो उनके ताऊ जी वहां पे हेड क्लर्क पोस्टेड थे।
0: अच्छा।
1: सोल्जर बोर्ड में, और गुड़गांव में जब भर्ती हुआ तो मेरे फादर जो है वो उनके ताऊ जी के पास पहुंच गए और मेरी कंप्लेंट की कि भर्ती होके जा रहा है, इसकी शादी वगैरह अरेंज कर रहे थे तो इसको रोको। तो मैंने बड़े रौब से बगैर ज्यादा कुछ बोलते हुए अपने फादर का बहुत रिस्पेक्ट करता था और गर्दन नीचे करके और अपने जो वुड बी फादर इन लॉ को भी ये बोल दिया कि जी फौज में जाना मेरे को अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो एंड ज्वाइन द आर्मी ओनली
0: जी। तो आप डिटरमिन्ड रहे, आप मजबूत रहे कि मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी ही है।
1: एक्चुअली ये था कि टेंथ करके अगर कॉलेज में आगे नहीं पढ़ना है और जोश था कि आर्मी ज्वाइन करें, क्योंकि आर्मी उस टाइम पे नंबर वन प्रोफेशन होता था आज के जमाने को ना कहते हुए। एंड आई हैड द इंसिस्टिंग टू माई सेल्फ इन दैट फीलिंग कि इससे बढ़िया नौकरी कुछ नहीं हो सकती।
0: अच्छा। सर, वो कौन सा साल था जब आपने ज्वाइन किया?
1: इट वॉज 1961
0: 61
1: या and

0: आई वॉज पोस्टेड रादर फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर,
1: अच्छा
0: और वहां पे इतना ज्यादा तगड़ा हुआ,
1: अच्छा
0: और जो मेरे वुड बी फादर इन लॉ थे उसने जाते समय वार्निंग दे दी थी कि अगर जा ही रहे हो बगैर हमारे बताए
1: मर्जी के
0: मर्जी के
1: जी।
0: तो वहां जाकर के फिर ये मत बोलना कि आप हमारा नाम कटवा
1: अच्छा
0: दो।
1: अच्छा अच्छा मतलब ऐसे नहीं कि आप पीछे हट जाएं
0: और जिस काम से मैं भागा था,
1: जी
0: जिससे शादी ना करने के डिले करने
1: जी
0: की शादी से भागा था, जब मैं रिक्रूट ही ट्रेनिंग कर रहा था
1: जी
0: तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी बुला करके और मेरी शादी भी हो गई
1: अच्छा
0: व्हेन शी वॉज 14 ईयर्स एंड आई वॉज 18 ईयर्स ओनली,
1: ओके
0: बिकॉज आई ज्वाइंट द आर्मी व्हेन माई एज वॉज ओनली 17 ईयर 216 डेज।
1: अच्छा आप पूरे 18 के भी तब तक नहीं हुए थे,
0: जी
1: और आपने अपनी सर्विस जो है नेशन के लिए, आर्मी के लिए, फोर्स के लिए देना शुरू कर दिया था
0: जी
1: जी। तो सर शुरुआत किस तरह से हुई? आप इन्फेंट्री में रहे, राजपूताना राइफल्स में रहे, तो यही शुरुआत थी या इससे पहले भी आपने किसी और जगह भी काम किया आर्मी में?
0: एक्चुअली जब सिग्नल्स के अंदर हम
1: सिग्नल्स में
0: जवान थे
1: जी।
0: तो वहाँ हमारी पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग वगैरह खत्म करने के बाद में
1: अच्छा
0: जालंधर,
1: ठीक है
0: जालंधर अलर्न कोर सिग्नल रेजिमेंट, उसके अंदर पोस्टिंग हो गई।
1: जी
0: एंड व्हेन आई वाज देयर 1962 का चाइना के साथ वार
1: अच्छा
0: हुआ,
1: जी
0: सो
1: जी
0: दैट टाइम हम जवान थे
1: अच्छा
0: तो पूरी रेजिमेंट के अंदर काफी
1: जी
0: तहलका मचा हो रहा था और हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जवान बन गए थे वहां पे। और 62 का ऑपरेशन के बाद में
1: जी
0: इमरजेंसी कमीशन स्टार्ट हुआ,
1: अच्छा
0: तो इमरजेंसी कमीशन के दौरान
1: जी
0: मेरे को स्पेशली एक अच्छा जवान सेलेक्ट करके
1: अच्छा
0: और कमांडिंग ऑफिसर के साथ में कुछ एक कैंडिडेट से जिनका
1: जी
0: इंटरव्यू कैंडिडेट करके और कर्नल साहब को जो हमारे सीओ थे उस समय
1: जी
0: उनको स्क्रीन आउट करना था कि कौन को हम आगे एसएसबी के लिए रिकमेंड करें।
1: अच्छा
0: सो वो बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट है विच यू वुड लाइक टू नो
1: जरूर सर जरूर हमारे
0: कि
1: लिसनर्स।
0: मेरे को ये ड्यूटी दी गई कि सबको बारी बारी कमांडिंग ऑफिसर साहब के अंदर ऑफिस में
1: ऑफिस
0: भेजते
1: में भेजा
0: रहिए
1: जाए
0: और इनके
1: जी
0: डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके एंड डू दैट फुल।
1: जी
0: सो सीओ साहब 1:30 बजे लंच ब्रेक के लिए घर चले गए और जाते समय बोल गए कि मैं 3 बजे वापस आऊंगा और 3 बजे के बाद में बाकी कैंडिडेट का हम इंटरव्यू करेंगे।
1: अच्छा
0: 3 बजे वो सही डॉट 3 वापस आ गए तो
1: जी
0: फर्स्ट कैंडिडेट को हमने बोला कि आप अंदर जाइए, तो वो अंदर गए तो उन्होंने जाते ही अंदर जाते ही बोला गुड मॉर्निंग सर।
1: अच्छा
0: बोल तो सीओ आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द टाइम, 3:05 सर,
1: अच्छा
0: तो व्हाई आर यू विशिंग मी गुड मॉर्निंग सर, तो ही सेड के सर वी हैव बीन टोल्ड इन द सिविल इफ यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट
1: अच्छा
0: विश हिम गुड मॉर्निंग। बोलता है इफ देर इज एनी हार्म इफ यू विश मी गुड आफ्टरनून और गुड गुड
1: हाँ
0: इवनिंग,
1: जी
0: बट सर वी हैव बीन टोल्ड द सिविल लाइक दैट। ही पुट अप सन अदर क्वेश्चन टू हिम ऑल्सो,
1: जी
0: सो ही वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई इट प्रॉपरली। देन ही कॉल्ड फॉर मी,
1: जी
0: आई इंटर्ड एंड सलूटेड हिम एंड ही पुट अप ऑल दोज क्वेश्चन टू मी एंड स्ट्रेट वे जो ही वो जैसे सवाल सारे मैं फटाफट जवाब दिया
1: जी
0: तो कर्नल साहब ने मेरे को तो चेयर ऑफर कर दिया और उसको बोला थैंक यू
1: अच्छा
0: कैरी ऑन,
1: और आपको
0: एंड
1: सिलेक्ट कर
0: ही
1: लिया
0: इंसिस्टेड मी और रादर मोटिवेटेड मी
1: जी।
0: यू ट्राई फॉर कमीशन, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर कमीशन। आई सेड सर आई एम नॉट ग्रेजुएट, आई एम मैट्रिकुलेट ओनली, आई एम नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन टू अप्लाई फॉर द
1: फुलफिल
0: इमरजेंसी
1: जी
0: कमीशन।
1: क्राइटेरिया
0: एंड
1: जी
0: ही टोल्ड मी दैट ओके क्राइटेरिया नहीं है अभी तो आप एसीसी के अप्लाई करिए, यू
1: जी
0: अप्लाई फॉर आर्मी कैडेट कॉलेज एंड आई सी दैट यू गेट सिलेक्टेड। एंड माइंड यू आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक, देयर
1: अच्छा
0: वाज 63 कैंडिडेट फ्रॉम माई रेजिमेंट दोज हु अपियर्ड फॉर इनिशियल आर्मी कैडेट कॉलेज
1: जी
0: ऑल द टेस्ट एंड ऑल दैट, आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट सिलेक्टेड आउट ऑफ 3
1: अच्छा
0: कैंडिडेट आउट ऑफ
1: 63 में से
0: 63
1: आप जी।
0: जो कि SSB तक पहुंचे।
1: तो ये मोटिवेशन सर आपको
0: ये
1: सीओ साहब से
0: मोटिवेशन
1: मिला
0: मोटिवेशन दैट
1: जी
0: वे आई गॉट मोटिवेटेड
1: जी
0: एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक, आई हैड वेरी गुड कैरियर
1: बिल्कुल
0: थ्रू आउट माई आर्मी कैडेट कॉलेज देन IMA एंड व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम देयर यू आस्क मी दैट हाउ यू गॉट इन टू यू इन्फेंट्री
1: बिल्कुल
0: दैट टू
1: जी
0: राजपूत राइफल।
1: जी
0: सो ऑन दैट आई जस्ट टेल यू कि वहां पे जो मेरे कंपनी कमांडर थे
1: जी
0: IMA के अंदर
1: जी
0: वो राजपूत राइफल से मेजर शर्मा साहब थे जो
1: अच्छा
0: कि वार वेटरन थे और VRC डेकोरेटेड थे।
1: अच्छा
0: सो आई वॉज वेरी आउटस्टैंडिंग, माइंड यू आई मस्ट बी प्राउड ऑफ टेलिंग यू ऑल्सो
1: बिल्कुल
0: कि
1: सर
0: आई हैव प्लेड वॉलीबॉल नेशनल लेवल एंड
1: नेशनल लेवल पर
0: बास्केटबॉल स्टेप डाउन एंड
1: अच्छा
0: आई वॉज गुड बॉक्सर एंड क्रॉस कंट्री रनर ऑफ द टॉप क्लास
1: क्या बात है
0: इन
1: सर।
0: अकेडमी।
1: वॉलीबॉल,

0: बॉक्सिंग और रनिंग
1: और रनिंग
0: क्या बात है.
1: एंड वॉलीबॉल नेशनल लेवल इज समथिंग
0: वेरी
1: वॉलीबॉल
0: वॉलीबॉल
1: सो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड एंड ही वॉन्टेड मी टू गो टू हिज रेजिमेंट ओनली.
0: अच्छा
1: एंड दैट्स वाई वेयर इज माई सीओ दैट टाइम वू गॉट मी सिलेक्टेड फॉर एसीसी. ही वॉन्टेड मी दैट आई शुड ज्वाइन सिग्नल्स बट आई गॉट इन टू राजपूताना राइफल्स एंड आई वाज माइटी हैप्पी टू बी विद द राजपूताना राइफल्स.
0: तो सर आपको ज्यादा मजा किसमें आया, मतलब आपको लगता है कि राजपूताना राइफल्स ही आपके लिए जो है एक ड्रीम था.
1: देखिए ऐसा मैं बताएं कि आर्मी ज्वाइन करना एज ए मैटर ऑफ प्राइड एंड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर एज ए डबल मैटर ऑफ प्राइड एंड इफ यू गेट इन टू इन्फेंट्री नथिंग लाइक दैट.
0: अच्छा
1: एंड अमोंग इन्फेंट्री राजपूताना राइफल्स
0: टॉप
1: इज अ टॉप.
0: अच्छा
1: एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दिस आई गॉट इन टू राजपूताना राइफल्स.
0: क्या बात है सर.
1: यू नो माई एल्डर सन इज ऑल्सो फ्रॉम राजपूताना राइफल्स.
0: यस सर.
1: And
0: जी
1: that boy also because Rajputana Rifle is one of the very good regiment
0: जी
1: and he is the one.
0: जी क्या बात है सर. हम आगे सर आपसे बात करेंगे और हम 62 जैसे आपने बताया हम 71 की बात करेंगे क्योंकि आप वॉर वेटरन रहे 1971 वॉर के, तो हम उस पर भी बात करेंगे और कुछ आपसे इंटरेस्टिंग कहानियां भी जानना चाहेंगे. तो आगे बढ़ेंगे हम और अपने लिस्टर से बताना चाहेंगे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमारे आज के हमारे खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं और 1971 वॉर वेटरन हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं अपनी बात कर सकते हैं और हमें आप सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर. आप बने रहे हमारे साथ यह है देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स. आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ.

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और आज हमारे हैं खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे इस शो में।
1: वेलकम, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया आज हमारे साथ। आप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनोखी भी हैं और बहुत ही खुशी देने वाली भी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बचपन से ही किस तरीके से आपके मन में था कि आपको फौज में भर्ती होना है और आपने किसी की परवाह नहीं की और आपने वो मकाम बनाया जो हर इंसान के लिए सर मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होता, जाहिर है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, तो वही आपने अपनी लाइफ में वो किया, अपने करियर में आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की, वो जो मकाम आपने बनाया, तो इसके बारे में आपके कुछ सर कुछ शब्द मैं चाहूंगा कि आप कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं?
1: आई थिंक ऊपर वाले ने जो दिया है
0: जी
1: जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे भी बहुत अच्छा मिला है। और जो 71 वॉर के बारे में
0: जी
1: मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा यंग ऑफिसर था एंड आई वाज मेजर रैंक था मेरे पास में, आई वाज कमांडिंग वन ऑफ द कंपनी ऑफ 9th बटालियन राजपूतन राइफल
0: जी
1: इन पुंछ सेक्टर,
0: पुंछ सेक्टर में
1: या।
0: जी तो सर 1971 वॉर वेटरन हैं आप, तो उसके सर हम उस वॉर के बारे में जानना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा रहे हैं, तो वो किस तरीके का सर दौर था, वो क्या हालात थे और जब वो जंग थी तो उस पर आपका और जो जो नेशन उस वक्त जो देश पर में चल रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए उस समय जो हालात थी
0: जी
1: वो मुक्ति वाहिनी वगैरह बहुत पहले से मूवमेंट शुरू हो चुके थे
0: जी
1: ईस्टर्न सेक्टर में, बट नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर पुंच एरिया स्पेशली उस साइड के अंदर कोई ज़्यादा इतनी चहल पहल नहीं थी, लड़ाई की तैयारियां नहीं थी। लेकिन लकली वी हैड ए जनरल ड्यू कमांडर मेजर जनरल कुंदन सिंह
0: जी,
1: ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम राजपूतन राइफल्स and he happened to be a one of the outstanding general who retired as MS lieutenant general
0: जी.
1: he was the one who pulled up the complete division and we were prepared for any eventuality or any war type thing
0: जी.
1: at that time
0: जी.
1: so he was the one and I was with the Bravo company commander
0: अच्छा.
1: in Punch sector where Punch is other side of the Punch river and
0: जी.
1: we were the other side of the दिस साइड ऑफ द पुंच रिवर एंड अदर साइड
0: थे
1: हम इस साइड में थे।
0: अच्छा।
1: और पुंच के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होता है एंड आई वॉज फेसिंग द पाकिस्तानीज अपोजिट माई पोस्ट अक्रॉस द रिवर पुंच रिवर,
0: मतलब आमने सामने की
1: आमने सामने थे
0: बिल्कुल,
1: और उनके पास में वहां पे आरसीएल गन लगी हुई थी और एमएमजी लगी हुई थी, वो डायरेक्टली हमारे अंडर व्यू थी, दे कुड फायर एट अस एंड वी कुड फायर एट देम।
0: अच्छा बिल्कुल आमने सामने,
1: आमने सामने फ्रॉम दैट टॉप एंड आई हैड यू नो कंपनी वाज डिप्लॉयड ऑन 3 पोस्ट।
0: अच्छा।
1: एंड आई वाज ऑन द मिडिल पोस्ट, फ्रॉम मिडिल पोस्ट जो पहाड़ी का था
0: जी
1: उससे हम पूरी कंपनी को अपना कंट्रोल करते थे
0: ठीक है।
1: और सामने से

0: वगैरह आते थे। चार
1: अच्छा
0: तारीख जैसे 4th ऑफ डिसम्बर
1: जी
0: फायरिंग स्टार्ट हो गया। तो फायरिंग स्टार्ट होने के बाद में पूरी रात हम लगभग लड़ाई लड़ते रहे, और जो
1: जी
0: ही फायरिंग स्टार्ट हुआ तो माई एक्शन वॉज कि मैंने पूरे जवानों से मिलकर उनको हौसला बढ़ाना है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली व्हेन द फायरिंग वॉज गोइंग ऑन आई
1: अच्छा
0: नेवर बॉदर्ड। फर्स्ट आई वेंट टू अदर पहाड़ी, अदर जो कि
1: अच्छा
0: जहां मेरी पिकेट थी
1: जी
0: ऑलमोस्ट अबाउट 1 किलोमीटर अदर साइड
1: अच्छा
0: ऑन द अपहिल ऑफ द माउंटेन,
1: अच्छा
0: एंड आई मेट ऑल द पर्सन एंड जवानों
1: आपके
0: का
1: आपके जवान जी
0: जवानों का हौसला
1: हौसला
0: बढ़ाते
1: बढ़ाने के
0: बढ़ाते,
1: लिए जी
0: देन आई वेंट टू द अदर पिकेट एंड देन टू माई ओन पिकेट, एंड कंप्लीट नाइट आई वॉज एक्टिव विद दैट मीटिंग द
1: अच्छा ये
0: पीपल एंड
1: मूवमेंट
0: नेवर
1: आपकी
0: वॉज
1: पूरी रात रही
0: पूरी रात रही।
1: जी
0: एंड
1: आप मोटिवेट करते रहे हौसला बढ़ाते रहे
0: यू नो वी हैव द कमांड पोस्ट
1: अच्छा
0: एंड कमांड पोस्ट इज सॉर्ट ऑफ ए वेरी वेरी सॉलिड बंकर
1: बिल्कुल
0: फ्रॉम वेयर यू कुड ऑब्जर्व एंड देन डायरेक्ट द फायरिंग एंड अदर थिंग ऑल्सो एंड कमांड योर कंपनी ऑल्सो।
1: बिल्कुल
0: सो फ्रॉम द कमांड पोस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग इट
1: जी
0: वॉज गोइंग टू बी डे लाइट आई गॉट आउट फ्रॉम माई कमांड पोस्ट एंड वॉज गोइंग फॉर ए पी पी प्लेस
1: जी
0: टॉयलेट,
1: जी
0: एंड टॉयलेट वॉज यू नो ऑल टेम्परेरी
1: जी बिल्कुल
0: टिन से टिन के ना टार्मिक के टिन होते
1: जी
0: हैं ड्रम,
1: जी
0: उसको
1: ठीक
0: कट
1: है
0: करके एक बड़े से पत्थर के साथ में
1: उसको बनाया
0: वो
1: जाता है
0: बनाया गया वाला
1: ठीक है
0: टेम्परेरी टाइप।
1: जी
0: सो आई वॉज गोइंग टू दैट वन। सो बंकर टू बंकर और वी हैव द कम्युनिकेशन ट्रेंचेज।
1: अच्छा
0: कम्युनिकेशन ट्रेंचेज आर द यू नो सॉर्ट ऑफ से अबाउट 5.5 6 फीट डीप फ्रॉम
1: अच्छा
0: थ्रू विच यू कैन
1: अच्छा
0: वॉक
1: उसके अच्छा उसके
0: उसके,
1: बीच में से आपको गुजर के जाना होता
0: सो
1: है अच्छा
0: हाँ चल के जाना होता है।
1: जी
0: सो व्हेन आई वाज वॉकिंग टू टॉयलेट एंड देन क्लाइम अप एंड गेट आउट फ्रॉम दैट वन,
1: जी
0: दैट टाइम देर वॉज ए साउंड ऑफ ए आरसीएल फायर।
1: अच्छा
0: व्हेन द आरसीएल फायर केम तो माई ऑपरेटर वॉज विद मी
1: जी
0: एंड ही वॉज कमिंग आउट विद मी कि मेजर साहब कहाँ जा रहे हैं,
1: जी
0: तो वो मेरे साथ जो ही निकला उसने सुना कि अब फायर हो गया आरसीएल,
1: जी
0: और इसने मेरा हाथ पकड़ के और पीछे गिरा दिया
1: अच्छा
0: और बोला अरे सब मरोगे। एंड इन द मीन टाइम द आरसीएल बम हिट दैट टॉयलेट वॉज, इट वॉज
1: अच्छा
0: थ्रोन अप इन पीसेस एंड द बिग द रॉक ओवर देयर इट वॉज ऑल
1: ब्लोन अप
0: ब्लोन अप एंड वी आर रियली इन डेंजर एंड इट वॉज ए गुड लक ऑफ
1: जी
0: माइन
1: बिल्कुल
0: एंड
1: कुछ सेकंड्स
0: थैंक
1: कहीं सिर्फ
0: यस
1: आप मतलब वो जो सामना
0: नेचुरली
1: होने वाला था
0: इट वुड हैव बीन द एंटायर
1: बिल्कुल
0: डिफरेंट थिंग आई वुड हैव बीन
1: बिल्कुल
0: पीसेस
1: बिल्कुल
0: नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टूडे।
1: बिल्कुल
0: सो दैट वॉज द वन। देन वॉट हैपन नेक्स्ट डे अर्ली आफ्टरनून वी गॉट ए ऑर्डर दैट यू हैव टू मूव आउट
1: अच्छा
0: टू अनदर बटालियन दैट इज बनवट सेक्टर एंड डिफेंड ए कंपनी ऑफ
1: अच्छा
0: अदर 6 सिख
1: ठीक
0: विच वॉज इन डेंजर विच वॉज अटैक दैट नाइट
1: अच्छा तो
0: एंड
1: आपको
0: नेक्स्ट
1: उनकी मदद के
0: नेक्स्ट
1: लिए
0: नेक्स्ट नाइट दे वर टू बी अटैक्ड।
1: जी
0: सो दैट वन ऑफ द FDL बिहाइंड दैट इज नंबर FDLs वर नंबर्ड एट 405 406।
1: अच्छा
0: सो 406 वॉज इन डेंजर इट वॉज इन
1: ओके
0: इनसर्कल्ड बाई द एनिमी।
1: अच्छा
0: सो आई वॉज टोल्ड दैट योर कंपनी विल गो एंड री इन्फोर्स दैट
1: रीइन्फोर्स करना
0: फोर
1: है
0: जीरो फाइव पिकेट
1: जी
0: सो
1: जी
0: दैट यू वी कुड फाइट बैक द एनिमीज। सो आई मूव माई कंपनी बिफोर लास्ट लाइट
1: जी
0: टू दैट साइड टूअर्ड्स पुंछ। वी हैड टू
1: अच्छा
0: गो अक्रॉस द पुंछ रिवर
1: जी
0: देन पुंछ टाउन टाउनशिप इज देयर
1: जी
0: पास पास थ्रू दैट प्लेस एंड द क्लाइम अप ऑलमोस्ट अबाउट 2,000 स्क्वायर फीट आई से
1: जी
0: एंड द ब्रिगेड हेडक्वार्टर वॉज एट द पुंछ रिवर
1: अच्छा
0: पुंछ हेडक्वार्टर द ब्रिगेड वन।
1: जी।
0: सो देर वॉज झूला ब्रिज विच वॉज टू बी क्रॉस्ड
1: अच्छा
0: बाई
1: जो
0: वी
1: बीच
0: पीपल
1: में
0: द
1: दरिया
0: झूला
1: होता है
0: ब्रिज
1: उसको
0: झूला ब्रिज ऑन पुंछ वॉज द
1: अच्छा
0: वन विच वॉज अ वुडन टाइप एंड यू नो ओनली इट वॉज ओनली फॉर टू व्हीलर्स
1: अच्छा
0: और
1: या फिर पैदल चल के जाने के
0: पैदल
1: लिए
0: चल के जाने के लिए।
1: जी जी
0: सो आई वॉज कॉल्ड बाई द बटालियन कमांडर फॉर द ब्रीफिंग। सो विद माई स्कॉट टू स्कॉट एंड व्हाट यू कॉल्स ऑपरेटर्स
1: जी
0: वी वेंट टू द बटालियन कमांडर एंड ही ब्रीफ मी दैट यू हैव टू गो एंड डू दिस वर्क 6 सिख वॉज द बटालियन विच वॉज डिप्लॉयड दैट साइड एट 405 406 एंड यू हैव टू गो एंड क्लियर द सैडल बिटवीन ब्लैक रॉक बिटवीन दीज टू FDLs।
1: अच्छा
0: ठीक है, एंड देन ज्वाइन द कंपनी विच इज फाइटिंग, विच इज लाइक यू टू फाइट दिस नाइट.

0: और
1: क्योंकि
0: नेक्स्ट
1: जैसे
0: डे
1: आपने बताया कि उधर से अटैक हो
0: उधर
1: चुका
0: जाके,
1: था और
0: हाँ जी उनको जाके आपने रीइन्फोर्स करना है.
1: रीइन्फोर्स करना है।
0: सो आफ्टर बेथिंग आई हैड टू आई गॉट ए आरसीएल जीप,
1: अच्छा
0: आई विद माई स्कॉट एंड ऑल दैट गॉट इन टू आरसीएल जीप वाइल मूविंग डाउन टूवर्ड्स दैट ब्रिज.
1: अच्छा
0: द ट्रैफिक वॉज टू मच बिकॉज दैट टाइम द ऑल कानवाइज लोडेड विद द एमुनिशन ऑल दैट आर्टिलरी
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: कानवाइज
1: जी।
0: दोज वर द ऑल लाइंड अप ऑन द रोड एंड माई जीप वॉज नॉट एबल टू गेट थ्रू. सो आई गॉट ऑन माई फीट
1: अच्छा आप पैदल
0: विद
1: चल
0: माई
1: करके गए।
0: स्कॉट एंड ऑल दैट
1: अच्छा
0: एंड आई वेंट अराउंड से 3 to 5 किलोमीटर वॉकिंग. वेन आई रीच टू द झूला ब्रिज
1: जी।
0: आई फाउंड माई कंपनी वॉज स्टक अप देयर. दे वर ऑल इन पोजिशन एंड फायरिंग वॉज गोइंग ऑन फ्रॉम बोथ द साइड्स.
1: अच्छा जिस वक्त आप पहुंचे उस वक्त भी ये सब फायरिंग।
0: मेरी जो कंपनी थी वो
1: जी
0: पुंछ रिवर के इस तरफ झूला ब्रिज के इस तरफ
1: और झूले के उस तरफ
0: अदर
1: झूला
0: साइड इज द
1: ब्रिज के उस
0: पुंछ,
1: तरफ। जी
0: पुंछ के परली तरफ से भी फायर आ रहा था और इधर से ये लोग भी फायर कर रहे थे. सो आई हैड टू रादर टू सबाल्टर्न टू यंग ऑफिसर
1: अच्छा
0: लेफ्टिनेंट वार्डने एंड लेफ्टिनेंट मल्होत्रा
1: जी
0: एंड द जेसीओज वर देयर. तो कंपनी जेसीओ से मैंने पूछा कि रंजीत साहब ये फायर क्यों हो रहा है,
1: जी
0: रंजीत साहब ये फायर क्यों हो रहा है.
1: जी
0: तो उन्होंने बताया सर उधर सामने से फायर आ रहा है. मैं क्या फायर क्यों किया, बोल सर ऐसा है झूला ब्रिज के ऊपर से 3-4 लोग आए थे
1: अच्छा
0: और जब वो आने लगे उतर रहे थे तो
1: जी
0: हमने उनको चैलेंज किया तो उन्होंने पासवर्ड नहीं दिया और वो भागने लगे. तो भागने से लगे तो हमारे जवान ने फायर कर दिया. मैंने बोला तुम्हारे को बताया था कि ऐसे तो हरकत नहीं करना, वहां जाके कंपनी को पोजीशन दे देना, मैं आके ज्वाइन करूंगा आपको.
1: ठीक
0: तुमने फायर क्यों खोला, बोले सर हमने सोचा एनिमी है तो जवानों ने फायर खोल दिया. मैं क्या ऑर्डर किसने दिया, बोले साहब मैंने दिया था. मैं चलो कोई बात नहीं है. देन आई कॉन्टेक्टेड द ब्रिगेड बीएम.
1: अच्छा
0: आई सेड माई कंपनी इज टू क्रॉस झूला ब्रिज एंड गो टू बनवट सेक्टर टू हेल्प आउट सेसिक एंड हु इज फायरिंग फ्रॉम अदर साइड. देर वॉज 80 कंपनी, 80 कंपनी
1: अच्छा
0: दोज आर यू नो विद द एनिमल्स म्यूज एंड ऑल दैट. दे थॉट के देर इज एनिमी टू अदर साइड
1: अच्छा
0: एंड दे आर फायरिंग टूवर्ड्स अस एंड वी आर फायरिंग दैट साइड.
1: जी सर,
0: सो
1: मैं एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा, जब ये सिचुएशन आप देख रहे थे अपने सामने, तो वो क्या फीलिंग्स होती हैं आप फायरिंग के बीच में जब जा रहे हैं, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और वो वॉर का समय है, तो क्या वो जो सिचुएशन होती है उसको किस तरह से फेस करते
0: वेल
1: हैं, महसूस करते हैं?
0: जो फीलिंग होती है
1: जी
0: वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है. हम तो इतने जोश में होते हैं कि कुछ हमको लगता ही नहीं है. हम तो को पता है हम
1: जी
0: जीतेंगे हम मारेंगे, हम अपने जो भी हमको ऑब्जेक्टिव मिला है जो टास्क मिला है उसको पूरा करेंगे. अभी
1: जी
0: बताता हूँ आगे क्या क्या
1: जी
0: हुआ.
1: जी
0: तो बीएम साहब ने बोला और 80 वाले, मैं उनको बोलता हूँ
1: जी
0: कि आप अपना कंपनी को लेके क्रॉस करिए
1: जी
0: और आप पहुँचिए जल्दी से. सो यू नो क्लाइंब वॉज क्वाइट बिग. वेन द फायरिंग स्टॉप
1: अच्छा
0: आई मूव माई कंपनी क्रॉस द झूला ब्रिज देन स्टार्ट क्लाइंबिंग अप. सो क्लाइंबिंग अप ऑल दैट टू दैट मल्होत्रा प्लाटून वॉज लीडिंग एंड वेज वी कम इन सिंगल लाइन.
1: अच्छा
0: ट्रैक के ऊपर जैसे पहाड़ों के चढ़ते हैं
1: जी
0: तो सिंगल लाइन पे जा रहे थे. एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड इट वॉज गोइंग टू बी अर्ली मॉर्निंग बट
1: अच्छा,
0: बिफोर फर्स्ट लाइट आई वॉज टू
1: तो
0: रीच
1: पूरी रात को आपको चढ़ाई चढ़नी थी।
0: बिफोर फर्स्ट लाइट आई वॉज
1: जी
0: टू डू द ऑपरेशन ऑल्सो. दैट वॉज माई टास्क
1: यानी कि
0: बिकॉज
1: आप
0: इफ इट वॉज द
1: जी
0: डे लाइट देन आई वुड बी एबल टू डू द नीडफुल.
1: बिल्कुल, तो इतनी टफ
0: सो
1: क्लाइंबिंग के बाद आपको ऑपरेशन भी अपना शुरू करना
0: कंप्लीट
1: है।
0: करना था.
1: बिल्कुल
0: सो वेन वी आर नियरिंग दैट ऑब्जेक्टिव
1: जी
0: बिफोर आई मीन द 405,
1: जी
0: द 405 वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ चेसिक एंड द सीओ वॉज देयर
1: अच्छा
0: एंड ऑल दीज पीपल दोज टेल में जो कंट्रोल करते हैं. तो मेरे को उनको जाके ब्रीफिंग लेना था, उनसे ब्रीफिंग लेने के बाद मेरे को ऑपरेशन करना था.
1: जी
0: सो टाइम वॉज रनिंग शॉर्ट. तो वैन आई फाउंड के आगे से वो बैठ गए सारे.
1: जी
0: तो मैंने जाके जवानों से पूछा क्या हुआ, बोल साहब वो मल्होत्रा साहब आगे बैठ गए. आई कॉट होल्ड ऑफ मल्होत्रा फ्रॉम हिज नेक एंड आई टोल्ड हिम व्हाट इज रॉन्ग विद यू व्हाई यू स्टॉप्ड. बोले सर टायर्ड. मैं कह यू गेट बैक एंड आई वॉज द वन टू लीड द कंपनी रीच टू द 405
1: फाइव
0: एफ डी एल
1: जी
0: एंड आई मेट द सीओ. सीओ ब्रीफ्ड मी. आई आई रिक्वेस्टेड सीओ के सर गिव मी टू स्कॉट दोज हु कैन टेल मी के फ्रॉम वेयर द फायर इज कमिंग
1: जी
0: सो दैट माई जवान्स कैन अटैक दैट वन एंड आई डोंट सफर कैजुअलिटीज.
1: जी
0: सो व्हेन ही टोल्ड मी दैट ओके मैं

0: Sain is the company commander, and
1: जी
0: you take two johns from him. They will tell you ke from where the fire is coming. So when I went to him, Major Sain said, "No, I am already under the attack, and I will not be able to give anything." So I walked back to commanding officer
1: जी
0: of Chesik, and I said, "Sir, your company commander is not giving me escort." Then he said, "Ke the task is given to you." I said, "Well, Colonel so-and-so, you are talking to the company commander of 9th Battalion, Bravo Company, and I'll see that my task is completed before the first light, and I'm going." So his adjutant came running with me, and he asked that Major Swain to give me escort, and I put up an attack sort of thing, I should say, that we had to go down. We had to go down in the what do you call valley, and climb up again, and then there was a black rock. From there, the MMG and LMG of Pakistanis, they were firing. There were a number of mules; those were killed, and one of the casualty was there. Other people were also injured in that valley.
1: Ji.
0: But before the first light, I was able to climb up, and that the enemy left his that location.
1: अच्छा,
0: leaving some ammunition in one of the
1: पीछे हट चुके थे वहाँ से.
0: They ran away from there.
1: जी.
0: And I joined Major Punjab and Major Padda over there. And there were 36 Pakistani, those were killed by that company that night itself. So next morning, we picked up all those dead bodies of them. I had breakfast, I had hot breakfast with Major Punjab and all.
1: अच्छा.
0: And then next task was given to me to go to help out other company, because I was one of the outstanding company commander and outstanding company in the complete division.
1: Gee.
0: With my young Joes and all that, and I had stood first in one of the competition which was conducted at the div level at the div headquarters at Rajouri, and the div commander himself has given this praise of mine that Bravo Company Commander Major K.S. Kamar Bhardwaj is one of the outstanding officer in this competition training we had in the Div Battle School.
1: जी.
0: So that was the reputation sort of that thing.
1: बिल्कुल सर, आपकी आपकी वो जोश और जज्बे से भरा हुआ वो जो मोमेंट रहा, उसमें आपने इतना बड़ा उसमें जो है कंट्रीब्यूशन दिया, रोल प्ले किया, तो वो वाकई यादगार है. और जैसे कि आपने बताया कि वो आपकी यादों में जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए, और वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में हमेशा के लिए वो जुड़ा हुआ
0: जो
1: है.
0: अभी आप बात कर रहे हैं, अभी वैसा जोश आ रहा है, अभी भी मैं उसी लड़ाई, उसी पहाड़ और
1: जी,
0: उसी
1: जी.
0: ब्लैक रॉक जिसको मैंने जाके कैप्चर किया
1: कैप्चर किया
0: और वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सामने अभी से मैं फिर से जवान हो जाऊं.
1: आप उन यादों में पहुंच गए और मैं आपके साथ उन यादों के साथ ही वहां पर पहुंच गया. आपकी बातों में मुझे महसूस हो रहा था कि मैं वहीं आपके साथ पीछे पीछे चल रहा हूं, आपकी बातों में और आपकी यादों में, जहां आप वॉर फ्रंट पर थे और आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे.
0: Say it's very nice to talk on that line.
1: जी. और सर, इसके बाद भी हम आगे आपसे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि हम और भी चीजें आपसे जानें, जैसे आपने 1971 वॉर की, आपने जो इंसिडेंट बताए यादगार कुछ लम्हे आपने शेयर किया हमारे साथ. सर, आर्मी सोल्जर्स ने सिर्फ वॉर फ्रंट पर ही नहीं, उसके अलावा अलग अलग स्ट्रीम्स में भी, स्पोर्ट्स में भी गोल्ड और अदर मेडल्स भी जीते हैं, तो आर्मी का कितना बड़ा रोल रहता है वो हर तरह से? जैसे कि आपने भी कहा, आप नेशनल लेवल चैंपियन भी रहे वॉलीबॉल के, बॉक्सर भी आप रहे, आप एक बेहतरीन रनर भी थे, तो आर्मी इन सब चीजों में भी आगे रहती है हमेशा, वो वहां भी कीर्तिमान स्थापित
0: well,
1: करती है.
0: राइट फ्रॉम द डे वन
1: जी,
0: फिजिकल साइड हैड बीन माय द बेस्ट आई से माय स्ट्रेंथ एंड देन माय मोटिवेशन,
1: बिल्कुल
0: माय
1: फिजिकल स्ट्रेंथ
0: एंड डिटरमिनेशन, ऑल दोस थिंग्स. Today I can say again that I am self-made man is
1: जी,
0: in front of you. ठीक है, from that background of a farmer family, at my own, without any sipares or without any recommendation or bribe or anything, I was the one to do all this thing.
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल grassroots level से शुरुआत की और आपने जो achievement हासिल करी वो आपकी अपनी earn की हुई है, अपनी मेहनत से आपने वो जो एक मकाम हासिल किया.
0: You will be proud to tell you that मैंने जब बटालियन में कदम रखा तो अपने आप को बटालियन में किसी जवान से कम नहीं समझा। मेरे फिजिकल में इतना दम था
1: जी
0: कि जवान भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ऑफिसर की तो बात ही छोड़
1: क्या
0: दीजिए।
1: बात है सर।
0: और मैंने जब बटालियन जामनगर आ गई तो उस समय मैंने बटालियन में बॉक्सिंग टीम रेज की, वॉलीबॉल टीम रेज की, और वो वॉलीबॉल नेशनल लेवल के प्लेयर बनाए, और जो बॉक्सर सेलेक्ट किए थे
1: जी
0: उसमें फर्स्ट टाइम 4 बॉक्सर कमांड लेवल तक बॉक्सिंग किया।
1: क्या बात है।
0: एंड

0: तीन पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं,
1: अच्छा उसको फिर
0: तो उसको
1: कंबाइन करके।
0: लेकर
1: अच्छा
0: के हमको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो ऐसे लंबी दौड़ें लगानी पड़ती हैं। सो आई यूज टू बी लीडिंग अमंग द जवान ऑल्सो विद ऑल दोट,
1: सही,
0: एंड
1: बहुत बड़ी
0: माई
1: बात है
0: माई सी ओ एंड माई 2IC एंड माई बटालियन यूज
1: जी।
0: टू कॉल मी रनिंग हॉर्स,
1: रनिंग हॉर्स,
0: रनिंग
1: क्या
0: हॉर्स।
1: बात है सर
0: सो दैट वॉज अ
1: जी।
0: यू नो एंड माइंड यू दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो मैरिड एंड फादर ऑफ वन डॉटर,
1: जी
0: देन सन वॉज ऑल्सो बॉर्न देयर ओनली
1: अच्छा,
0: जामनगर,
1: क्या बात है सर।
0: एंड
1: कर्नल
0: आफ्टर दैट आई हैड गॉन टू द वॉर।
1: जी, कर्नल कमर भारद्वाज की बात सुनकर के हम भी जोश से पूरी तरीके से भर गए हैं। और यहां पर मैं जरूर कर्नल कमर भारद्वाज, जो सेना मेडल सम्मानित हैं, 1971 वॉर वेटरन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं संदेश टू सोल्जर्स में, उनको सर मैं आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूं जो आपकी पसंद से मैंने निकाला था। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, घर से निकलते ही आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स 102.6, देश का नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर शाहिद के साथ। आप हमें संदेश टू सोल्जर्स में कर्नल कंवर भरद्वाज से आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और जो मैसेजेस सर आ चुके हैं, मैं उनको आपको पढ़कर सुनाऊंगा इस गाने के बाद।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और आज के हमारे खास मेहमान हैं आज के शो में कर्नल कमर भारद्वाज सेना मेडल से सम्मानित वॉर वेटरन हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम उनकी कहानी सुनकर के खुद भी जोश से अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं। सर यहां पर मैं आपसे जो भी अभी

0: तक मैंने बात की, आपके बारे में बात की, लेकिन सर एक ऐसी एक शहीद की बात भी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, जान की आहुति दी, और वो थे कैप्टन उमंग भारद्वाज, आपके सुपुत्र, जिनको उनके साथी प्यार से टाइगर बुलाया करते थे। तीन सक्सेसफुल ऑपरेशंस उन्होंने किए, जिन तीन ऑपरेशंस में उन्होंने 15 ड्रेडेड टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद चौथा ऑपरेशन था, वो एम्बुश था 18 और 19 नवंबर 2002 की मिडिल नाइट में। उस दौरान सर 6 टेररिस्ट मार गिराए गए, जिनमें से 2 को अकेले उमंग भारद्वाज ने ही मौत के घाट उतारा। और सर उसी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बलिदान दिया, शहीद हुए वो, और उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। सर वो मोमेंट था, एक प्राउड मोमेंट भी था, लेकिन बहुत ही यंग एज थी उनकी जब उन्होंने शहादत पाई और टेररिस्ट का मुकाबला करते हुए उनको मार गिराया और अपनी भी जान की आहुति दी देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे याद करते हैं आप?
1: ओह माय गॉड, कैसे याद करते हैं। जैसे उसका नाम था ना उमंग, ही
0: जी
1: वॉज ऑलवेज ए लाइव वायर, आई टेल यू। ये मेरे लाइफ का वो इतना चाहता बेटा था।
0: जी
1: ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज माई बेस्ट गाइड, ही वॉज माई बेस्ट फादर, एडवाइजर, वॉट सो यू कॉल, बिकॉज इट हैपन सो कि वो बड़े भाई से 7 साल छोटा था,
0: अच्छा
1: जो उस समय मेजर थे और
0: जी
1: एनएसजी में इंस्ट्रक्टर थे, मेजर
0: जी
1: राजेश भारद्वाज।
0: जी
1: और सबसे बड़ी सिस्टर जो है
0: जी
1: उनकी, वो डॉक्टर सविता है।
0: अच्छा
1: सो उमंग वॉज फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम, एंड वी नेवर वॉन्टेड टू सेंड हिम टू
0: अच्छा
1: आर्मी,
0: अच्छा
1: बट ही गॉट सिलेक्टेड इन रिटर्न, एंड देन ही वॉज टू गो फॉर SSB। दैट टाइम ऑल्सो माई सेल्फ और मेरी और उसकी मम्मी
0: जी
1: दीक्षा भारद्वाज ने काफ़ी कोशिश की है कि हम इसको नहीं भेजें, बट उसने हमारे को परस्यू करके और उस
0: जी
1: लाइन पे ले आए कि नहीं, मेरे को फौज
0: आर्मी
1: में
0: ज्वाइन
1: जाना
0: करना
1: है
0: है जी
1: और मैं पहले जाता हूँ SSB में। अभी हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देखते हैं कितना दम है हमारे अंदर। तो वहाँ SSB में गया
0: जी
1: एंड ही गॉट सिलेक्टेड बिकॉज पहले तो बोला था मैं ठीक है 5 साल के लिए आऊँगा, जब
0: जी
1: जाएंगे तो शॉर्ट सर्विस में चले जाएंगे। एंड ही गॉट इन मेरिट एंड ही गॉट रेगुलर
0: जी
1: टू ज्वाइन CSD IA में ज्वाइन करके,
0: अच्छा
1: तो कमांड डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन क्लियर करके
0: जी
1: और SSB वगैरह क्लियर करके IMA से पास आउट हो गया। दैट टाइम आई ट्राई टू गेट हिम इन द ASC और AOC।
0: अच्छा
1: सो दैट टाइम आई वेंट टू आर्मी हेडक्वार्टर, वन ऑफ द ऑफिसर ओवर देयर विद माई फ्रेंड, आई हैड गॉन टू हिम एंड आई सेड कि भाई बेटा पास हो रहा है, तो मेजर हुड्डा वॉज देयर।
0: जी
1: ही सेड कि सर उसको हम आर्मर्ड कोर तो और मैकेनाइज इन्फेंट्री नहीं दे पाएंगे, राजदेव दे देते हैं। आई टोल्ड हिम, मैं कह रहा वो मेरे पे एहसान नहीं कर रहे आप,
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो उसको मैं क्या, हमने राजीव नहीं चाहिए उसको, तो राजीव तो उसका फादर बाप है, उसका भाई है, तो वो
0: जी
1: तो उसका पेरेंटल हक है, वो तो मिलेगा।
0: बिल्कुल
1: बट वी वॉन्ट हिम टू गो टू नेवी, व्हाट यू कॉल, ASC और AOC, बिकॉज दैट टाइम देर वॉज सम हिच इन माई माइंड एंड माई वाइफ माइंड कि इसको कहीं खतरा है, पता नहीं क्यों ऐसा ही
0: आपको
1: पहले
0: जी,
1: ही लग रहा था।
0: लेकिन सर उस उनमें उमंग में आपका वाला ही वो जोश था, अपने पिताजी का वो जोश और जज्बा, इसीलिए उनके साथ ही उनको टाइगर कहकर
1: आई
0: पुकारते
1: एम
0: थे।
1: कमिंग टू दैट वन। तो
0: जी
1: उसको व्हेन ही पास्ड आउट एंड व्हेन ही केम टू नो कि ये मेरे को ASC मिली है,
0: जी
1: तो मैंने वो उसको वो फोन पे बड़ी मुश्किल से बातचीत किया एंड ही
0: जी
1: वॉज क्राइंग ऑन फोन कि डैड मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया, वाई यू गॉट मी इन ASC। आई सेड बेटे आपको 3 साल मिलेंगे अटैचमेंट के लिए, उसमें आप हमारी राजीव मेरी पलटन के साथ या भैया की पलटन के साथ में आप अटैचमेंट पे आना, अगर आपको राजीव ही चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, अदरवाइज मैं क्या राजरिप पर अगर मिल जाती है या इन्फेंट्री मिल जाती है उसे बाहर निकलना मुश्किल होगा। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम देयर एंड वी वॉन्ट टू यूज जज अबाउट यूर सेल्फ।
0: जी
1: ही सेड नथिंग डूइंग एंड मेरे ऊपर कोई मेहरबानी मत करना, अभी जहाँ मेरी पोस्टिंग आती है मेरे को जाने दीजिए।
0: अच्छा
1: ही ज्वाइंट 7 जाट एंड 7 जाट के अंदर गया,
0: जी
1: तो ही वॉज पोस्टेड इन महेंद्र सेक्टर एंड नाउ कमिंग टू द ऑपरेशन।
0: अच्छा
1: ही वॉज सच ए जॉली फेलो एंड फुल ऑफ

0: जोस ऑफ द टाइम.
1: ही
0: कंडक्टेड थ्री ऑपरेशन विच यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट.
1: जी
0: और थ्री ऑपरेशन के अंदर उसने 5 मार दिए थे.
1: जी
0: इसमें एक इंसिडेंट और बताऊंगा.
1: जी
0: एक डी के शाह उसी कोर्समेट, ही वॉज ऑल्सो विद द 7 जाट एंड देर इज ए घातक प्लाटून.
1: जी जी
0: तो दिस बॉय उमंग वॉज डूइंग घातक प्लाटून कमांडर फॉर 1 ईयर एंड ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन ही हैज किल्ड 15 terrorist.
1: जी
0: एंड दीज फोर ऑफिसर दोज वेज जॉइंट टूगेदर 7 जाट दे हैड टेकन ए सॉर्ट ऑफ प्लेज दैट जब तक हमारी पलटन यहाँ है और हम यहाँ पर हैं
1: जी
0: कोई टेररिस्ट हमारे एरिया से
1: जिंदा नहीं जा सकेगा,
0: जिंदा नहीं जा सकेगा, अंदर घुस नहीं सकेगा,
1: घुस नहीं सकेगा.
0: एंड दैट ही डिड. कैप्टन डी के झा सेक्रीफाइस्ड अबाउट 2.5 मंथ्स अर्लियर देन दैट इन दैट सेम एरिया. एंड उमंग वॉज डूइंग एडिडेंट. उमंग टोल्ड मी in the night around midnight
1: जी.
0: he told me that dad DK is no more. I say what the hell are you talking. बोलते वो तो छोड़ो मेरे से ऊपर क्या गुजर रही है. वट उसके ब्रदर हैं दिल्ली के अंदर एंड हिज बॉडी विल बी कमिंग टू एयरपोर्ट एंड उसके ब्रदर को आपके उसके साथ भेजना पटना एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 आई कॉल यू एंड गिव मी रिपोर्ट. दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर फॉर माई यंगर सन एंड द ब्रेव बॉय. And next, I did all the things because he told me कि उसके पास पैसा नहीं होगा, उसकी टिकट वगैरह कर दीजिए और डेड बॉडी के साथ वो उधर से लेके जाएंगे उसे. So that was done. Then उमंग का जो बताया ऑपरेशन, he was doing adjutant for 2 years. He was posted out, posting आ चुका था. He came on 10 days leave and 10 days leave के वापस जब वापस गया, so he reached there. On the 17th evening,
1: जी
0: rather 18th evening,
1: जी 18th or
0: 19th 18th evening he reached there,
1: जी
0: and he was there to have his farewell parties and all that and pick up a trophy and get out from the battalion doing good job. That time there was some information on news and all that there are some terrorists those who are crossing the border. So he went to the CO and requested him that I want to go for the operation. So CO told him, no, you send somebody, you will not go, you are already posted out and you have to go, that is enough for you. So this boy insisted on him and the third time he got ready, took some people with him and went for the operation himself. Then CO warned him that go up to so-and-so location and conduct the operation.
1: जी.
0: Take care. अपना ध्यान रखो.
1: जी.
0: But this boy, full of juice, and when he went with the ambush party as the ambush commander,
1: जी.
0: He put the ambush over there and allowed the 6 terrorists to get into the ambush. And then he opened the fire. First terrorist was killed by his fire. Then other people, personal engaged by ambush terrorist. One terrorist was running back towards the Dhara. One of the Dhara is the Khanda type of makan
1: in
0: the पहाड़ों में जिनमें डंगर उंगर बांधते हैं. तो उसमें वो shelter लेने के लिए भाग रहा था. Umang ran parallel to him and shot at him also. Umang also got a shot from side from this fellow or any terrorist, those who are still alive.
1: आमने-सामने की लड़ाई थी उस टेररिस्ट के साथ.
0: From 6 meter itself.
1: अच्छा.
0: Each other shouted at each other and he said काफिर and all that. He said bloody fool, I'll kill you. And he shot him down over there. And he told his operator के रामकिशन अपने सीओ साहब को बोलो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, जवानों को फायर जारी रखे, कोई बच के नहीं जाना चाहिए और मेरे सियाद कहीं लग गई है. बाय दैट टाइम द ऑपरेटर अप्रोच्ड हिम, उमंग वाज नो मोर.
1: अच्छा. तो उस मोमेंट पर उमंग भारद्वाज ने शहादत पाई उस ऑपरेशन के दौरान.
0: जी.
1: 6 टेररिस्ट जो मारे गए,
0: 15 पहले मार चुके थे, 21 टेररिस्ट.
1: जी. तो आज हम शौर्य चक्र से सम्मानित मरणोपरांत कैप्टन उमंग भारद्वाज को याद करते हैं, उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, उनके शौर्य के लिए, अदम्य साहस के लिए.

0: हम यहाँ पर समय बहुत कम बचा है। मैं चाहूँगा कि जो मैसेजेस हमारे पास बहुत समय से आ गए थे उनको मैं आपको पढ़ करके बताऊँ।
1: जी
0: गुड आफ्टरनून का मैसेज है हितेंद्र दास का असम से आपके लिए, और उसके बाद ये मैसेज है। गुड आफ्टरनून टू कर्नल रिस्पेक्टेड सर एंड आरजे सर, आई एम राइटिंग फ्यू वर्ड्स टू आर इंडियन आर्मी। आई बो माई हेड विद इमेंस रेस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर आर बिलवड इंडियन आर्मी। यू प्रोटेक्टेड आर बॉर्डर्स विद अनवेवरिंग करेज। यू सर्व द नेशन विद सेल्फलेस डेडिकेशन एंड यू इंस्पायर एवरी इंडियन विद योर सेक्रीफाइसेस। बिकॉज ऑफ यू वी लिव इन फ्रीडम एंड पीस, सो एंटायर नेशन इज फॉर एवर इंडेबटेड टू यू इंडियन आर्मी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये है सर शंकर लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: और आर्मी ऑफिसर को और आरजे सर को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। यशवंत आडमुटे धाराशिव हैं सर, ये महाराष्ट्र से, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। भारद्वाज साहब से मिलने में बहुत खुशी है जी, वेलकम टू द शो। श्रीकांत हैं सर ये टोल गेट त्रिची तमिलनाडु से,
1: आई एम
0: और
1: ऑल्सो
0: ये
1: वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। थैंक
0: जी
1: यू वेरी मच।
0: चरण कुमार हैं सर ये सन ऑफ श्री ब्रिजेश कुमार विलेज बरकतपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर स्टेट यूपी से, और कर्नल भारद्वाज जी को मेरी ओर से जय हिंद जय भारत ये कह रहे हैं आपको सर।
1: हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत उन सबको, हमारे साथियों को, सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक।
0: जी, और सर हैं ये शांतचारा बादीगर कोकानूर हरिहार से देवनागरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। रिस्पेक्टेड सर, संदेश टू सोल्जर इज अ वेरी मीनिंगफुल एंड हार्ट टचिंग प्रोग्राम। यू प्रेजेंट ब्यूटिफुली रिमाइंडिंग अस ऑफ द सेक्रीफाइसेस सर्विसेस करेज एंड पैट्रियटिज्म ऑफ ब्रेव सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट अवर नेशन डे एंड नाइट एट द बॉर्डर्स। सोल्जर्स स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्रीमैन। देयर डेडिकेशन एंड सेल्फलेस सर्विसेज आर ट्रूली कमेंडेबल सर, ये कह रहे हैं। हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू फॉर ब्रिंग सच अ मीनिंगफुल प्रोग्राम टू अस। थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना और आपने हमें मैसेज किया। और हैं सर ये कर्नल कमर भारद्वाज जी, जय हिंद। 71 आमने सामने के वार का विवरण सुनकर मन उत्साह से भर गया है। कमर जी का आज भी वही जज्बा महसूस हो रहा है सर, आपकी बात सुनकर के ये कह रहे हैं
1: थैंक यू सो मच।
0: जी। और नाम शुभ संध्या, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, शायद राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से हैं ये, और ये है मैसेज। नमस्कार, मेरठ से वीरू बख्शी, आपके टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी मेहनत करी आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। और भी सर बहुत सारे मैसेजेस हैं और समय बहुत कम हमारे पास बचा है
1: अभी
0: ये
1: अभी कुछ एक बार पूछ लो और ना।
0: जी सर। अब हम मैसेजेस बहुत सारे, मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय है बहुत कम हमारे पास। मैं सर बस चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी और आपके जो फैमिली है उसका किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, अब आप किन चीजों में इन्वॉल्व हैं सर रिटायरमेंट के बाद।
1: इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद में हमने एक स्कूल खोला था
0: जी,
1: बाय द नेम ऑफ कर्नल पब्लिक स्कूल,
0: कर्नल
1: माना
0: पब्लिक
1: हुआ
0: स्कूल
1: पब्लिक स्कूल है,
0: जी
1: CBSE 10+2,
0: जी
1: एंड आवर वॉलीबॉल टीम हैव बीन अंडर 19 अंडर 17,
0: जी
1: नॉट ओनली नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन,
0: जी
1: एंड आई हैड ए हॉस्टल ऑल्सो इन द स्कूल इटसेल्फ फॉर द
0: जी
1: बॉयज।
0: जी आज सब आप सोशल सर्विसेज में भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, और आप जो लोग होते हैं जिनको मदद चाहिए सोशल सर्विसेज में, आप भी और आपका परिवार भी इसमें पूरी
1: सोशल
0: तरीके से
1: सर्विस के उमंग के जाने के बाद में
0: जी
1: हमने अपना ध्यान लगाया सोशल सर्विस एंड अदर थिंग्स के अंदर, जिसके अंदर के
0: जी
1: वन रैंक वन पेंशन, ये
0: अच्छा
1: हमारा पूरा फाइट था।
0: जी
1: और आज हमारे पुराने फौजियों को, खास करके वार विडोज एंड विडोज को,
0: जी
1: जो
0: जी
1: फायदा मिला है और हम सबको, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: और सर उसमें आपने
1: दूसरा,
0: पूरी मेहनत की उसको
1: उसमें सारा जो प्रोटेस्ट था, बहुत आई वॉज लीडिंग वन एंड
0: जी,
1: ऑल द प्रोटेस्ट वॉज
0: और उसमें सर
1: कैरिड
0: कामयाबी
1: मी माई
0: मिली
1: वाइफ
0: जी
1: एंड मिस जाखड़ इज वाइफ।
0: जी
1: एंड दूसरा, एक मैंने बहुत बड़ा ये टोल का यहाँ पे होता था बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव,
0: अच्छा
1: MBS मॉल के पास में,
0: जी जी
1: जहाँ दो दो ढाई ढाई घंटे
0: ट्रैफिक
1: ट्रैफिक जैम
0: रहता था,
1: होता
0: जाम
1: था,
0: होता था
1: और इवन एम्बुलेंस और प्रेग्नेंट वुमेन वर
0: जी
1: नॉट एबल टू गेट थ्रू, एंड इन दैट वी आई वॉज एबल टू गेट इट रिमूव
0: जी
1: परमानेंटली फ्रॉम दैट
0: आपने ये
1: प्लेस,
0: सब काम किए, और अब भी आप लगे रहते हैं कुछ ना कुछ
1: बिकॉज
0: करते
1: ऑफ
0: रहते हैं।
1: मोटिवेशन ऑफ उमंग एंड माई
0: बिल्कुल
1: सेल्फ इज फुली आई बीन इन्वॉल्व इन ऑल दी थिंग एंड
0: बिल्कुल सर
1: डिवोटेड टू वट्स ओवर मैक्सिमम आई कैन डू, आई मस्ट डू टिल आई एम एबल टू डू समथिंग।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही जोश भरी आपसे हमने बातें की आज, और हमने याद भी किया कैप्टन उमंग भारद्वाज को भी, जिनको शौर्य चक्र से नवाजा गया मरणोपरांत, उनकी बहादुरी।

0: के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल सम्मानित, 1971 वॉर वेटरन। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे
1: आपका
0: शो में
1: भी
0: शामिल
1: बहुत
0: होने
1: बहुत
0: के।
1: धन्यवाद आपको और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय,
0: भारत माता की जय। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, आपने हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे। और 102.6 देश के नंबर वन रेडियो पर प्रोग्राम जारी रहेंगे। आगे है सैटेलाइट्स, मीना के साथ शायद को दें इजाजत।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: नमस्कार।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियो सीढ़ी में 9:30 हो चुके हैं। अब वक्त हो आ जाता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग्स का।

0: नज़्बत दस्तूर, आज आप समाप्त कर सकेंगे मुशायरा जिसमें आपको अपना कलाम पेश सुनाएंगे आगा सरोश समीउल्ला समी जामिन अली मुसर्रत। इसके बाद दोस्तों, आपका पसंदीदा प्रोग्राम जो कि फिल्मी नगमों पर मबनी रहेगा, गीत सुरे लगाते जा में आप पसंदीदा नगमे समाप्त कर सकेंगे। और आखिर में पयामे शब से आज के उर्दू प्रोग्राम नए रंग का इख्तिताम होगा। आगाज पर समाप्त कीजिए हर्फ ताबिंदा, तहरीर और पेशकश है मोहतरमा आयशा बुतुल की।
1: इंसान की शख्सियत वो आईना है जो उसके ख्यालात, आमाल और आदात की अक्कासी करता है। एक मजबूत और मौसर शख्सियत ना सिर्फ जिंदगी में कामयाबी की जमानत बनती है बल्कि दूसरों पर भी मुस्बित असर डालती है। शख्सियत की नशोनुमा में कई पहलू अहम किरदार अदा करते हैं, उनमें सबसे पहले आता है खुद आगाही। शख्सियत की नशोनुमा का पहला और अहम कदम खुद आगाही है। इंसान को अपनी कुव्वतों, कमजोरियों, ख्वाबों, मकासद और जज्बात को पहचानने की जरूरत होती है। जब हम अपने आप को समझते हैं तो अपने अमल को मौसर तरीके से मुनज्जम कर सकते हैं। दूसरा पहलू है मुस्बित सोच। मुस्बित सोच इंसान की शख्सियत को मजीद निखारती है। मनफी ख्यालात से बचने की कोशिश करते रहने चाहिए और जिंदगी में हमेशा रोशन पहलू देखने की आदत डालनी चाहिए। मुश्किलात को चैलेंज के तौर पर कबूल किया जाना चाहिए और उनसे सीखने का मौका हासिल करना चाहिए। तीसरा और इंतहाई अहम पहलू है मुताला। किताबें इंसान की शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छी किताबें पढ़िए, चाहे अखलाकियात की किताबें हों या फिर किसी मखसूस मौसू पर मबनी किताबें। मुताले से ना सिर्फ इल्म में इजाफा होता है बल्कि शख्सियत की गहराई और वसत में भी इजाफा होता है। समाजी ताल्लुकात भी शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। शख्सियत की नशोनुमा के लिए समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना जरूरी है। दूसरों से मेलजोल रखना चाहिए, उनके ख्यालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी बातों को सलीके से पेश करना चाहिए। समाजी ताल्लुकात की मजबूती से इंसान की खुद एतमादी में इजाफा होता है। चौथा अहम पहलू है खुद एतमादी। ये शख्सियत का अहम जुज है। अपने आप पर यकीन रखना चाहिए, अपनी सलाहियतों पर एतमाद होना चाहिए, क्योंकि खुद एतमादी की कमी इंसान को जिंदगी के मौके से महरूम कर सकती है। इंसान का मुस्तकिल मिजाज होना भी जरूरी है। मुस्तकिल मिजाजी और तहम्मुल ही होते हैं जो इंसान की शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। किसी भी हदफ को हासिल करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है। मुस्तकिल मिजाजी से इंसान को मुश्किलात का सामना करने का हौसला मिलता है। मुस्बित आदत का होना भी जरूरी है। अच्छी शख्सियत के लिए मुस्बित आदतें अपनानी चाहिए, जैसे कि सुबह की सैर की जाए, वर्जिश की जाए, मतवाजन ग़िज़ा और मुताले की आदत डाली जाए। इन तमाम से शख्सियत में बेहतरी आती है। मुस्बित आदतें इंसान को ताजगी और तवन्नाई फराहम करती हैं। शख्सियत की नशोनुमा के लिए अमली महारतें भी अहम हैं। कोई नया हुनर सीखा जाए, चाहे वो खाना पकाना हो, मौसीकी बजाना हो या फिर कोई नई जबान सीखना हो। अमली महारतें इंसान की खुद एतमादी में इजाफा करती हैं और उसे नया तजुर्बा हासिल करने का मौका फराहम करती हैं। जहनी सेहत भी शख्सियत की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। जहनी सुकून के लिए योगा और दिगर राहत पहुंचाने वाले तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि जहनी सुकून से इंसान की तवन्नाई में इजाफा होता है और शख्सियत में निखार आता है। जिंदगी में मकसद का होना शख्सियत की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। तो अपने मकासद को तय करें, उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि मकसदियत से इंसान की शख्सियत में वजाहत और दुरुस्त सिमत पैदा होती है। याद रहे, शख्सियत की नशोनुमा एक मुसलसिल अमल है जो जिंदगी भर जारी रहता है। इन इकदामात पर अमल करके आप अपनी शख्सियत को बेहतर बना सकते हैं और एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं।
0: यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय अभी आप समाप्त कर रहे थे हर्फ ताबिंदा, तहरीर और पेशकश थी मोहतरमा आयशा बुतुल की।

0: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीम अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस रेडियो सी घड़ी में 9:38 हो चुके हैं। सामईन आइए आगे बढ़ते हैं, लीजिए समाप्त कीजिए इस महफिल का अगला प्रोग्राम मुशायरा, जिसमें आपको अपना कलाम सुनाएंगे आगा सरोश समी उल्ला समी जामिन अली हसरत। लीजिए समाप्त कीजिए।
2: सामईन मोहतरम, ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद की जानिब से मुनक़िदा इस खुसूसी मुशायरे में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आज के इस खुसूसी मुशायरे में शहर हैदराबाद के मुमताज़ व मारूफ शरा शिरकत फरमा रहे हैं, जिनके इस्माई ग्रामी हैं समीउल्ला समी, डॉक्टर जामिन अली हसरत, आगा सरोश। आइए मैं इस मुशायरे का आगाज करने के लिए शहर के मारूफ शायर समीउल्ला समी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें।
3: मोअज़्ज़िज़ सामईन, आपकी खिदमत में गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। अर्ज़ किया है कि उल्फत को हमने रख लिया नफ़रत निकाल के, उल्फत को हमने रख लिया नफ़रत निकाल के, नफ़रत के सांप रखे नहीं दिल में पाल के, मंजर बदल गए हैं पुराने ख्याल के, मंजर बदल गए हैं पुराने ख्याल के, किरदार मस्क हो गए शीशे में हाल के, देखे हैं दौर हमने उरूजो जवाल के, देखे हैं दौर हमने उरूजो जवाल के, रखते हैं इसलिए ही कदम हम संभाल के। मतलब है कि कासे में अपने हमने किनात को डाल के, कासे में अपने हमने किनात को डाल के, इज्जत को अपनी रखा है हमने संभाल के। आखिरी मतला है गजल का कि लाया हूँ मोती हुस्न का दरिया खंगाल के, लाया हूँ मोती हुस्न का दरिया खंगाल के, तरकीम करने तेरे कसीदे जमाल के। शेर है कि गिरता नहीं कभी मैं बुलंदी से इसलिए, गिरता नहीं कभी मैं बुलंदी से इसलिए, रखता हूँ साथ अपने मैं जीने जवाल के। शेर है कि दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, अहबाब सारे गोया के पंछी थे डाल के। दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, अहबाब सारे गोया के पंछी थे डाल के। शेर है के नादां कहा किसी ने तो पागल कहा कोई, नादां कहा किसी ने तो पागल कहा कोई, तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के, तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के।
4: फिर सुनाइए। वाह वाह वाह।
3: नादा कहा किसी ने तो पागल कहा कोई, तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के।
4: क्या बात है।
3: शेर है कि आखिरी शेर है मकते से पहले कि खैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों, खैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों, खैरात हमने दी नहीं सिक्का उछाल के, खैरात हमने दी नहीं सिक्का उछाल के, खैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों, खैरात हम

0: वाह वाह वाह, बहुत बहुत बहुत कुछ समंदर के अलावा,
1: समंदर के अलावा। और ये आखिरी शेर।

समय ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियो सिगड़ी में 10:05 हो चुके हैं। अभी आप समाप्त कर रहे थे मुशायरा। मुशायरे के अंदर आपको अपना कलाम सुना रहे थे आगा सरोश, समीउल्ला समी, जामिन अली हसरत। समय लीजिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। और साथ में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑन रूरल वुमर के बारे में। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सामईन, आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं दही खवातीन का आलमी दिन। सामईन, इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद दही इलाकों में रहने वाली खवातीन की अंतक मेहनत, इनकी कुर्बानियों और ज़िरात खुराक की हिफाजत और दही तरक्की में इनके कलीदी किरदार को सहराना है। दही खवातीन किसी भी माशरे की माशी और समाजी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन इसके बावजूद वह अक्सर बुनियादी हुकूक और सहूलियात से महरूम रहती है। सामने इसी तरह हम बात करते रहेंगे, लीजिए समात कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामिन, अभी आप समाप्त कर रहे हैं दैही ख्वातीन का आलमी दिन। सामिन, दुनिया की तरक्की में ख्वातीन का किरदार निहायत अहम है। ख्वातीन माशरे की तामीर व तरक्की में मर्दों के शाना बशाना काम करती है। ख़ास तौर पर दैही ख्वातीन ज़िरात, मवेशी पालने, घरेलू सनतों, बच्चों की परवरिश और ख़ानदान की देखभाल में अहम किरदार अदा करती है। इनकी मेहनत से न सिर्फ घर का निज़ाम चलता है बल्कि मुल्क की मौशियत को भी मजबूती हासिल होती है। सामाइन, इस तरह हम बात करते रहेंगे लेकिन इस नगमे के बाद। लीजिए समात कीजिए ये नगमा मोहम्मद अजीज़ और साथियों की आवाज़ में।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस रेडियो सी घड़ी में 10:24 हो रहे हैं। अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मैं अपनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे थे दही खवातीन का आलमी दिन। सामीन, अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 18 दिसंबर 2007 को एक करारदाद के जरिए 15 अक्टूबर को दही खवातीन का आलमी दिन करार दिया। इसका मकसद दुनिया को यह बारो करना था कि दही खवातीन न सिर्फ अपने घरों को संभालती है बल्कि वो दुनिया की खुराक का निज़ाम चलाने में भी बराबर शरीक है। दुनिया भर में ज़राअत से वाबस्ता अफराद की क़ुव्वत का एक बड़ा हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है। फसलों की बोई से लेकर कटाई तक, मवेशियों की देखभाल से लेकर दूध और दिगर मसनूआत की तैयारी तक, हर मरहले पर दही खवातीन का किरदार नुमाया होता है। अगर ये कहा जाए कि दुनिया की भूख और ग़िज़ाई किल्लत से बचाने में दही खवातीन का हाथ सबसे आगे है तो गलत ना होगा। सामईन, इसी तरह हम बात करते रहेंगे, लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। समय ना भी आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमा पर मैं अपने प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे थे आलमी योम दही खवातीन के दिन के मुतालिक चंद बातें। समय ये दिन हमें याद दिलाता है कि दही खवातीन सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां नहीं निभाती बल्कि वजीरात, खुराक की पैदावार और दही मवेशियत की तरक्की में भी बुनियादी किरदार अदा करती है। इनकी मेहनत के बगैर दही जिंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। दही खवातीन की जिंदगी मेहनत, सब्र और कुर्बानी की मिसाल है। वो सुबह सवेरे उठकर घर के काम अंजाम देती है, बच्चों की देखभाल करती है, खाना पकाती है और खानदान के दिगर अफराद की जरूरियात पूरी करती है। फसलों की कटाई में हिस्सा लेती है, बीज बोती है और मवेशियों की देखभाल करती है। समय इस तरह हम बात करते रहेंगे, लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामईन, बहुत सी खवातीन दूध, दही, मक्खन और दिगर अशिया तैयार करके खानदान की आमदनी में इजाफा करती है। बास, सिलाई, कटाई, दस्तकारी और घरेलू सनतों के जरिए भी रोजगार हासिल करती है। इनकी ये कोशिशें न सिर्फ खानदान को माशी सहारा फराहम करती है बल्कि मुल्क की मईशत को भी मजबूत करती है। लीजिए समझ कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। समय आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मैं अपने प्रोग्राम गीत सुन

लगा दे। जा, समय ना आज 15 अक्टूबर है, तो आज इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर्स डे भी है। यानी अगर उर्दू में कहा जाए तो योम कोर।

भारतीय फौज का वो मजबूत इंजीनियरिंग सोन है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि फौज का हर हथियार, गाड़ी, तैयारा और मौसलाती निजाम हर वक्त जंग के लिए तैयार रहे। हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ये दिन इस अहम तरीन तकनीकी फौजी फोर्स की क़याम की याद दिलाता है जो अपने इंतहाई मुतासिर को नज़्बुलाइन कर्म ही धर्म यानी काम ही इबादत के तहत काम करने वाली फौजी नज्म जब्त और जदीद तरीन इंजीनियरिंग की महारत एक बेहतरीन इम्तिजाज है। इस कोर की तारीख दूसरे जंग अजीम के उरूज से जुड़ी है। जैसे ही फौजें रिवायती घुड़सवार दस्तों से निकलकर मशीनी और टैंकों वाले यूनिट्स में तब्दील हुई, इंजीनियरिंग और मरम्मत के माहिर दस्तों की जरूरत तेजी से बढ़ गई। चुनाचे 15 अक्टूबर को इस फोर्स को बाकायदा तौर पर इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से कायम किया गया। समझ लीजिए, समाप्त कीजिए एक नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामईन आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। सामईन 1947 में आज़ादी के बाद इसके नाम से लफ्ज़ इंडियन हटा दिया गया और यह कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स बन गई। सामईन आज़ाद मुल्क की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसमें बड़े पैमाने पर तब्दीली दी गई की गई। दिहाइयों बाद जब जंगी हिकमत अमली में पेचीदा रडार, सैटेलाइट सिस्टम्स और कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ा तो इलेक्ट्रिकल की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल कर दिया गया। फौजी हिकमत अमली में गोला बारूद और फौजियों की तादाद इस वक्त तक बेमाने है जब तक हथियार सही काम ना करे, मौसलाती निज़ाम ठीक ना हो जाए। ईएमई कोर मुल्की दिफाई आलात के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। इनका बुनियादी मकसद हर हालत में आलात को चालू रखना होता है और ये फौज के हिस्से में मौजूद रहते हैं। ईएमई के इंजीनियर्स सिर्फ पीछे वर्कशॉप में नहीं बैठते, जंग के दौरान ये टीमें फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले दस्तों के साथ साथ चलती है। दुश्मन की गोलियों की बौछार के दरमियान भी ये टैंकों और तोपों की मरम्मत का काम करते हैं ताकि जंगी कार्रवाई ना रुके। लीजिए समा कीजिए ये नगमा।

समय ना, यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामयीन, सियाचिन की ग्लेशियर्स की हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी और ऑक्सीजन की कमी हो या थार के रेगिस्तान की झलसा देने वाली गर्मी, ईएमई के जवान हर नामवाफिक मौसम और इलाके में रडार और इंजनों की देखभाल का काम कामयाबी से अंजाम देते हैं। ये कोर आर्मी एविएशन विंग के हेलीकॉप्टर्स की परवाज की सलाहियत और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स की मरम्मत की मुकम्मल जिम्मेदार है। लीजिए समाप्त कीजिए यह नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर. सामईन, अभी आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरैले गाते जा. लीजिए समाप्त कीजिए इस महफिल का आखिरी प्रोग्राम पयाम-ए-शब. तहरीर और पेशकश होगी नदीम अख्तर जैदी की.

0: कुछ बिखरी हुई यादों के किस्से भी बहुत थे, कुछ उसने भी बालों को खुला छोड़ दिया था। बाज़ यादें इंसान के दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं, मगर हमें माजी में उलझकर अपने हाल को जाया नहीं करना चाहिए। जिंदगी में गुजरे हुए खूबसूरत लम्हात हमेशा याद रहते हैं, मगर यादों को दिल में महफूज रखना और उनमें खो जाना दो अलग बातें हैं। माजी हमें खुशी, तजुर्बा और सबक दे तो उसे नेमत समझे, लेकिन अपने आज और आने वाले कल को माजी के हवाले न करें। खूबसूरत यादों को मुस्कुराहट के साथ याद करें और जिंदगी का सफर आगे बढ़ाते रहें।
1: समय ना, स्टूडियो सीढ़ी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हात में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बारी बारी से दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: అవతారిణి. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी.
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा. कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
0: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी. नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. G-SAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है. सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है. दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है. इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे. वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा. सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता. न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप

0: आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में DCP नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हों जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
2: Ladakh ki pragati aur vikas mein ek aur adhyay jud raha hai. आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varun Astra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varun Astra heavyweight torpedoes worth over 1,500 crore rupees was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other India bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the Apex Court in the national capital over alleged irregularities in the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on 12th of this month to file the petition amid protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner over alleged SIR irregularities. It also issued notices to Congress leader Mallikarjun Kharge, Samajwadi Party, TMC MP Mahua Moitra, the Kerala Pradesh Congress Committee. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. During the hearing of another case, the Supreme Court today ruled that individuals converting from Hinduism to Islam or other non-Hindu religions.

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Shagun Chopra with my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है शगुन।
0: Yes, benchmark domestic indices surge around 2%. Sensex jumps over 1500 points. Nifty settles at nearly 23,000 level. Country's merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 2% का उछाल। सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा अंकों की तेजी। निफ्टी 23,000 अंक के आसपास बंद हुआ। देश का उत्पाद निर्यात इस वर्ष सितंबर में 23% की बढ़त के साथ $44.4 बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक यानी 2.11% उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक यानी 1.66% की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार का प्रदर्शन आज मुख्य सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा। मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.4% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended higher today. The Sensex surged to 1,534 points or 2.11% to close at 74,316. The Nifty rose 375 points or 1.66% to settle at 22,000.

0: 1997. The broader market at the National Stock Exchange underperformed the frontline indices. The mid-cap 100 index dropped nearly 0.4% and the small-cap 100 index shed 1.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 27 कंपनियों के शेयरों में आज तेजी दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा 4.6% ऊपर आया, आईसीआईसीआई बैंक 4.2% के लाभ में रहा और रिलायंस में 4% की बढ़त दर्ज हुई. इसके विपरीत बीईएल और ट्रेंट में 0.6% की गिरावट आई जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.1% से ज्यादा नीचे आ गया.
0: In the sectoral indices on the BSE, 15 out of 28 sectors ended in the positive note. Among the top gainers, top 10 banks climbed 2.3%, private banks advanced over 1.8%, and IT jumped 1.5%. In contrast, capital goods dropped over 2.4%, power slipped more than 1.8%, and PSU banks dipped 1.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,668 companies declined, 1,720 advanced, and 203 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले आज 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 रुपए पर बंद हुआ. एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. एकेबी, आज के मार्केट की हम बात करें तो सेंसेक्स में हमने देखा लगभग 1,500 अंक से अधिक का उछाल आया. वह निफ्टी भी 23,000 के आसपास पहुंच करके बंद हुआ. कई दिनों बाद ये आंकड़े हमारी आंखों के सामने हमें नजर आ रहे हैं. तो इन तेजी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, घरेलू कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, या फिर इसे बाजार में एक मजबूत वापसी का संकेत माना जा सकता है?
2: देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बाजार में मजबूती आने का ये संकेत है. ये जो आज का जो उछाल आपने देखा है, इसको हमें बारीकी से देखना है. इस उछाल में के पीछे आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हालांकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक सेंटर्ड रैली है, इसमें अगर आपने जैसे अभी पढ़ा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई है
1: जी.
2: तो ये रैली सिर्फ फोकस्ड है लार्ज कैप स्टॉक में, ये रैली सिर्फ फोकस्ड है आईटी सेक्टर में, ये रैली फोकस्ड है प्राइवेट सेक्टर बैंकों में. आपको मालूम होगा कि कल सरकार ने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया था कि आईडीबीआई बैंक का स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन होगा उसका. उसी का एंड आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक जो Q2 जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसमें काफी उछाल आया है और उसी के कारण हम ये देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक में आपका जो बढ़त आज आपको हासिल हुई है. मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बढ़ोतरी हमें पिछले कई महीनों में दिखी वो आज वो काफ़ी गिरावट में आई. उसका कारण भी ये है कि काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई आज क्योंकि उस लेवल में, और दूसरी बात ये है कि जो रुपया जो है और रुपए में थोड़ी मजबूती आई है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीशन से, उससे भी जो मार्केट में थोड़ी बहुत मजबूती आई है. पर अगर आप ये समझे कि आज की जो मजबूती आप देखी ये कोई अगले दिनों का संकेत है, ये मैं नहीं मानूंगा. ये वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है वो अभी भी चलती रहेगी और ये एक रिकवरी फेज है और रिकवरी फेज का कारण जैसे मैंने कहा आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंकिंग में और लार्ज कैप स्टॉक में जो एक रिकवरी और Q2 अर्निंग्स की जो एक मजबूती है वो दर्शाती है.
0: सर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स दे फेस प्रेशर डिस्पाइट द रैली इन द मार्केट. So, and I have two questions for you.
2: Sure.
0: Both of them I'll question right now only. So, does this imply that investors are concentrating their capital only in select large cap companies? First one. And what signal should retail investors take from this particular divergence?
2: So, I think what the investors are doing is they are pulling their money out of the small and the mid cap stocks. Because the small and the mid-cap stocks had already appreciated to a level where profit booking was possible. Mm. So they are pulling their money out. And they are also reinvesting in the large-cap stocks and taking positions and keeping their powder dry because we are entering into a major big IPO phase. And when you are entering into

0: major IPO phase, like the Jio, Reliance Jio IPO is going to hit the markets very soon. It will be one of the largest IPOs. So that IPO would mean that the domestic investors are gearing up for that position. So I think the mid-cap and the small-cap profit booking has led to the surplus, which is going into the large-cap, and the large-cap is being positioned as a preparatory step for investing in the new IPOs that are coming.
1: AKB, आज IT और बैंकिंग के शेयर्स ने मार्केट को काफी सहारा दिया. आपने भी IT शेयर्स का जिक्र किया है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में काफी कमजोरी देखी जा रही. तो इन्हीं सेक्टर्स में बाजार आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ऐसा फेज आपको आपको लगता है कि आने वाले समय में बिकवाली जो व्यापक हो रही है उसमें कुछ कमी आएगी और सभी चीजों में आगे एक जैसा माहौल देखने को मिलेगा?
0: आपने एक बहुत सही प्रश्न किया है. मुझे लगता है कि जो आईटी सेक्टर की जो स्ट्रेंथ जो है, बहुत क्वार्टर के बाद एआई की जो चपेट आईटी सेक्टर में आई थी,
1: जी
0: उसको उसके ऊपर जो इंडियन आईटी सेक्टर की जो बायोंसी, जो रेजिलियंस जो है, उसको दर्शा रहा है. और बहुत क्वार्टर के बाद जो Q2 अर्निंग्स जो आ रही हैं, सब आईटी कंपनीज की Q2 अर्निंग्स में बहुत बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है. और उसी के लिए मैं समझता हूँ कि आईटी सेक्टर को हमें ट्रैक करना पड़ेगा और किस तरह से हम आगे आईटी सेक्टर को देखेंगे, उसको हमें ये एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर रहेगा, मैं समझता हूँ.
2: Also, Mr. Bhattacharya, PSU bank performance. I mean, what's your opinion about PSU bank performances nowadays? What's
0: Well,
2: your take on it?
0: I think what's happening is that the PSU banks have done very well since the prompt credit reaction plan was put in place by the Reserve Bank of India in 2017. For the next 3-4 years, the PSU banks have done very well in reducing their